आप जो देते हैं वही पाते हैं। अंग्रेजी में आपने कई बार सुना होगा, यू रीप व्हाट यू सो और व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा दिए गए विचार, भावनाएं और कर्म ही हमें वापस मिलते हैं। जब हम दूसरों के प्रति सकारात्मकता और प्रेम दिखाते हैं तो हमें भी वही वापस मिलता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारे विचार और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं।

सुप्रभात, नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है जिसका प्रसारण किया जा रहा है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं और इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी प्यारे श्रोताओं का मैं आपका रेडियो दोस्त कारगर युवा आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सन 2024 के अगस्त महीने के आज 8 तारीख है और दिन है शनिवार। आज के हमारे पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो तथा एचपीति में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। हर रोज की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ साथ देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरें। तो आइए इस सभा को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों के रूपरेखा से।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। 7:10 पर आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट। 7:35 पर प्रसारित होगा तागिन श्रोताओं का समाचार। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदा बहार।

और इन सब के अलावा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज तथा शिलोंग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज आप सुनेंगे 8:30 पर। आठ बजकर 40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर आप सुनेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो प्यारे श्रोताओं, ये था आज के हमारे पहली प्रसारण सभा में प्रसारित होने जा रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री

0: लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. He will address more than 3,000 graduating students, including undergraduate and postgraduate students and 587 PhD scholars. The Prime Minister said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institution. Addressing a press conference in New Delhi yesterday, Director IIT Delhi Rangan Banerjee said that Mr. Modi will present the institute's most prestigious awards, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medals to the meritorious students. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will inaugurate the new office of the National Urban Cooperative Finance and Development.

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, और मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग, लेकर आया हूं श्रद्धा।

विश्वास और आध्यात्मिक सुकून से सजा हुआ आपका अपना कार्यक्रम भक्ति गीत। श्रोताओ, भक्ति वो एहसास है जो मन की बेचैनी को शांत करता है, दिल में विश्वास जगाता है और हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। और जब बात हो भगवान श्री राम की, तो मन में अपने आप ही मर्यादा, सत्य, त्याग और कर्तव्य की भावना जाग उठती है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में वचन, कर्तव्य और रिश्तों की मर्यादा को सर्वोच्च स्थान दिया। आज के इस पावन भक्ति सफर में हम सुनने जा रहे हैं कुछ सुंदर राम भजन, भक्ति संगीत के लोकप्रिय और मधुर स्वर सुरेश वाडकर जी के भावपूर्ण आवाज में। तो आइए श्रोताओं, कुछ पल के लिए दुनिया के भागदौड़ को पीछे छोड़ दें, मन को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करें और भक्ति के इन मधुर सुरों के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम भक्ति गीत। आज के भक्ति गीत कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं राम भजन सुरेश वाडकर जी की आवाजों में। श्रोताओ, भगवान श्री राम का नाम लेते ही मन में सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन के तस्वीर उभर जाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि राम नाम में ऐसी शक्ति है जो असंत मन को भी शांति दे सकती है। जब दिल परेशान हो, जब रास्ते मुश्किल लगे, तो कुछ पल प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए, मन को अपने आप एक सहारा महसूस होगा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज के भक्ति गीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर तनगा दम रोगाम जाब अमदागला हो पोलोग आलोपिन आरोगो घालो मेंकेन अबालोक मेलेन जिदांग नांगो मारियो मत भारत का प्रेसिडेंट नली द्रौपदी मुर्मू मग अलाक लोक मलोग लुगो आलो हुकुरबार ओगो न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन बोलोक नेशनल हैंडलूम अवार्ड आलोब लोदुम दाग ओगो येलिक दागला मग अलाक लोक आयागम रूब 22 अवार्ड्स गो जिलेंटु एगे निदुम आउम गो सेंट कबीर हैंडलूम अवार्ड्स एमने पाम तु ओक इगो लाकोना 19 निदुम गो नाम कुदा नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स एमने पाम तु को मुनुक अम्ब नतु तासाग लोक काकेन ब गलगा पो एम मोला इनाम पुनाम ओम कादु थादु कोला माजी पे कोई ज्यादा दागला सिन मेंतु नुनु हम्ब आले देन अनियर लोसिन हिलोग हम्ब काकेन जाब मोब रुतोला का अनासिन याका जागो नितोम अबु नाम सिन पोतु ओक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिसिन मलोग गुग भारत गुदा होक नारु गुमिन होइन गदग नेशनल हैंडलूम दे गुदिब लोदुम नाम एमने कादु तादु कुला वीडियो मेसेज बसिन जिलेन दगला मेंतु हो

0: silver medal go ok bronze medal axe go patu munik embe panam ka em kadu thadu kula deputy chief minister narme tournament ge pele lok maji be koi jadala sin itu ok embe koi dagla me ale den anyala tolsin hamba iba member ru tolaka em lasin mentu ok ekna keli aba emne inekun ge polo ten polo ge alo hamun tarik lok irople la hyo polo ge hok loum tarik o god be ipin ka em la menke nagom lo jilik da ke ketanga da hirga galomenken agma aga
1: श्रोताओ भी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुप्रभात दोस्तों, सुबह की सुनहरी किरणों के साथ, ताजी हवा की ठंडक और एक नई उम्मीद के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग शो सुबह सवेरे में। मैं हूं आपका अपना आरजे कर्ग और आपके साथ एक ऐसी सुबह बिताने के लिए जहां होगी बात आपकी सेहत, फिटनेस और खुशहाल जीवन की। दोस्तों कहते हैं, अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। इसलिए सुबह सवेरे में हम लेकर आते हैं योग के आसान और फायदेमंद आसन जो शरीर और मन को बनाए रखे संतुलित और स्वस्थ, जुड़ी जरूरी जानकारियां जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए बेहतर। दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि सुबह के इन खूबसूरत फलों में आपको मिले कुछ ऐसी जानकारी जिसे अपनाकर आप और आपका परिवार रह सके स्वस्थ और खुशहाल। तो चलिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच कीजिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए। तो तैयार हो जाइए हेल्दी, हैप्पी और पॉजिटिव मॉर्निंग के लिए, क्योंकि शुरू हो चुका है सुबह सवेरे। और बढ़ते हैं आज के योग सेगमेंट की ओर। दोस्तों आज योग सेगमेंट में हम ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत आम हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के बारे में। भागदौड़ भरी जिंदगी, तनाव, गलत खान पान, कम नींद और शारीरिक गतिविधि के कारण बहुत से लोग ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं। योग शरीर और मन को शांत करने, तनाव कम करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद कर सकता है। नियमित योग के साथ सही खान पान और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और लाभदायक योगासन। पहला है शवासन। ये तनाव कम करने का सबसे आसान आसन है। इसे करने के लिए पीठ के बल आराम से लेट जाएं, दोनों हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करके धीरे धीरे गहरी सांस लें। 5 से 10 मिनट तक इसी स्थिति में रहें। इसके फायदे हैं, मानसिक तनाव कम करने में मदद करता है, शरीर और दिमाग को आराम देता है, तनाव के कारण बढ़ने वाले रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है।

अगला है वज्रासन। ये मन को शांत करने वाला आसन है। इसे करने के लिए घुटनों को मोड़कर एरियों पर बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा रखें, हाथों को घुटनों पर रखें। 5 से 10 मिनट तक आराम से बैठें। इसके फायदे हैं, मन को शांत करता है, पाचन बेहतर करने में मदद करता है, साथ ही शरीर को स्थिरता और आराम देता है।

अगला है बालासन। ये शरीर को आराम देने वाला आसन है। इसे करने के लिए वज्रासन में बैठे, धीरे धीरे आगे की ओर झुके, माथे को जमीन के पास रखें और हाथ आगे फैलाएं। कुछ देर इसी मुद्रा में रहें। इससे तनाव और थकान कम करने में मदद करता है, गर्दन, कंधे और पीठ को आराम देता है और मन शांत होता है। अगला है मकरासन। ये रिलैक्सेशन के लिए है। इसे करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को मोड़कर टुड्डी या माथे के नीचे रखें, शरीर की पूरी तरह ढीला छोड़ दें। 5 मिनट तक अभ्यास करें। इसके फायदे हैं, शरीर की थकान कम करता है, सांसों को सामान्य करने में मदद करता है और शरीर को गहरी रिलैक्सेशन देता है।

अगला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये सांसों को संतुलन करने का आसन है। आरामदायक मुद्रा में बैठे दाहिने हाथ से एक नथुने को बंद करके दूसरे से सांस लें और इसी को आप विपरीत दिशा में फिर से करिए। धीरे धीरे 5 से 10 मिनट करें। इसके फायदे हैं, तनाव कम करने में मदद करता है, मन को शांत करता है, सांस लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है। अगला है तारासन। ये शरीर के संतुलन के लिए है। इसे करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, शरीर को ऊपर की ओर खींचे, कुछ सेकंड रुके और वापस आए। इसके फायदे हैं, शरीर का संतुलन बेहतर करता है, पोस्चर सुधरने में मदद करता है और शरीर को सक्रिय बनाता है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां हैं। योग हमेशा धीरे धीरे और आराम से करें। सांस रोक कर रखने वाले कठिन अभ्यास ना करें। बहुत ज्यादा जोर लगाने वाले आसन करने से बचें। नियमित रूप से अपना बीपी चेकअप करते रहें। डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां हमेशा समय पर लेते रहें। दोस्तों, योग सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाता है। जब मन शांत होता है, तनाव कम होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। तो आइए रोज कुछ मिनट योग को दें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम उठाएं। इसी के साथ आज का योग सेगमेंट यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे सुबह सवेरे के एक नए योग और अन्य स्वस्थ जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए। सुनते हैं कार्यक्रम में ये बेहद खूबसूरत गीत। आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने।

भोजन करें जिसमें शरीर को भी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मिल सके, क्योंकि दोस्तों अच्छा भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। ये बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट यानी ऐसा संतुलित भोजन जिसमें शरीर की जरूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व शामिल हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल, पानी और फाइबर। बैलेंस डाइट के महत्वपूर्ण फायदे, शरीर को ऊर्जा मिलती है। दोस्तों अगर हमारा भोजन संतुलित होगा तो शरीर को दिन भर काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। वजन नियंत्रित रखने में मदद, सही डाइट का मतलब खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि सही मात्रा में और सही समय पर पौष्टिक भोजन करना है। यह वजन को नियंत्रित रखने में मदद करती है और शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने का खतरा को कम करता है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। फल, सब्जियां, दालें और पौष्टिक भोजन शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल देते हैं। पाचन तंत्र बेहतर होता है। फाइबर से भरपूर भोजन जैसे सब्जियां, फल, साबुत अनाज पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। अच्छा खान पान शरीर के अंदर से खूबसूरती बढ़ाता है, त्वचा में निखार आता है, बाल मजबूत और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। दोस्तों आजकल बहुत से लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हेल्दी डाइटिंग का मतलब है कम खाना लेकिन सही खाना है। हेल्दी डाइटिंग के फायदे हैं, वजन कम करने में मदद, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, शरीर हल्का और एक्टिव महसूस होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो रोज की डाइट में क्या शामिल करें? सुबह गुनगुना पानी, पौष्टिक नाश्ता जैसे दलिया, पोहा, पलिया, अंडा, दोपहर में दाल, हरी सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, रात को हल्का और संतुलित भोजन करें। बीच बीच में मेवे, फल, हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। किन चीजों से बचना चाहिए? ज्यादा तला हुआ भोजन, बहुत अधिक मीठा, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बिना जरूरत के क्रैश डाइट। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए महंगे भोजन की नहीं बल्कि सही आदतों की जरूरत होती है। एक संतुलित आहार, नियमित योग, थोड़ा एक्सरसाइज और अच्छी नींद, यही है एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन का मंत्र। तो आज से ही अपना थाली को बनाएं स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी। इसी के साथ आज का हेल्थ सेगमेंट यही समाप्त होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पीत रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिलहाल सुबह सवेरे कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

0: कॉलेज ईटानगर हो सिटी वाइड इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज का आगे हो कंदक मकिंदो हला लोगों ने हो का मॉक ड्रिल का पार्ट पा एयर रेड सीरेन में अलिंग का 8 बजे हो मकिंदो हलालो ने हो 15 मिनट्स का ब्लैकआउट में अक्रॉस ईटानगर कैपिटल रीजन हो अलिंग का 8 बजे हो कुला 8 बजे 15 मिनट्स पीएम लोय पा मकिंदो हो सिटीजन आतामी रिक्वेस्ट मिला मलांजा लाइट्स में ऑफ ला हो उदयरा हो दूला पेनिक मापा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ला इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज में पुलिस कॉपोरेट मुद्दे पालो ने ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस ला इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिविटीज में हक एक्सरसाइज मुद्दे है में अंडरटेकन मकिंदो हला लोने हो पब्लिक आतामी एडवाइस बिला पुलिस सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ला खुद भी ऑफिशियल्स ड्रिल पका डिप्लॉय मला का इंस्ट्रक्शंस बिनमी पोलो मुद्दे पालो ने हला लोगों ने ताकम ज्योतिला आदिनाथुम अरुणाचल प्रदेश ओक सिल्वर मेडल ला ब्रॉन्ज मेडल में प्रेस्टिजियस वातुमी ओपन इंटरनेशनल वुसु टूर्नामेंट ओक पाइबने हो हे का टूर्नामेंट में इनेकुन पुलो जुलाई 30 ओकला सका पुलो अगस्त 3 लोयपा जॉर्जिया का वातुमी गंदा हो मने हला लुकोने हो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हे मो अनिरु का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में कंग्रेचुलेट बिला हो आलिन मियोदु होमना सक्सेस तो पावेस बिने हला लुकोने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडु हु इनेगुन अलो हो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का कमिटमेंट विला हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में री एपर मिला लुने ने एवरी पॉसिबल एपोर्स लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ स्टेट वेपर्स एंड आर्टिसन में अपलिफ्ट मुदो हला लुकोने दोर्जी खांडु स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर होका हैंडलूम डे अलोमी का सेलिब्रेशन मिली अलो हो लुने ने ट्रेडिशनल वेविंग हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट का रिच कल्चरल आइडेंटिटी ला डिजर्व कंटिन्यू सपोर्ट का सिंबल पालिदो हलालो ने चीफ मिनिस्टर हाईलाइट मला अनिरु स्टेट गवर्नमेंट ला सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनिरु क्लोज कोऑर्डिनेशन हो कामी मला मुइंसला हैंडलूम सेक्टर में प्रमोट मुदो हलालो को ने होमो योसा योसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लॉन्च मन मार्केट एक्सेस में इम्प्रूव दोपा स्किल डेवलपमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस ला वेलफेयर स्कीम फॉर वेबर अक्रॉस द कंट्री में इम्प्रूव दोपा मने चीफ मिनिस्टर में टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट मिनिस्टर न्यातो दुकाम हु गेस्ट ऑफ ऑनर पर ज्वाइन मने हो एडवाइजर टू द मिनिस्टर डॉक्टर महेश चाय में स्पेशल गेस्ट पा ज्वाइन मने हला लुको ने उसरो का तनुपे लुको सने हम कने सीसी बीसी प्रोग्राम में मिली बोली कपिजा पसरो नुनु हागी कोमोगा हागी कोमोला लगा गान्या का बसन नमी तपागेंदो
1: श्रोता भी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
2: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, बदलती दुनिया के साथ हर पल कुछ नया घट रहा है, ऐसे में दिन की शुरुआत सही और भरोसेमंद जानकारी के साथ हो तो पूरा दिन बेहतर बन जाता है। इसलिए हम लेकर आए हैं देश दुनिया और अपने अरुणाचल प्रदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले आइए देखते हैं आज के राष्ट्रीय ताजा खबरें। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को आधिकारिक नाम दिए। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं को के मानक आधिकारिक नाम अपने नक्शे में दर्ज किए हैं। ये कदम चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के नाम बदलने की कोशिशों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें लोंगजू, माजा, बिस्वा, जोला, रिजाला, पुकुरला और थागला जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। खास तौर पर थागला का 1962 के भारत चीन युद्ध के इतिहास में रणनीतिक महत्व रहा है। यह खबर हमारे अरुणाचल प्रदेश के श्रोताओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे राज्य की क्षेत्रीय पहचान और सीमा से जुड़ी हुई है। FCRA संशोधन पर अमेरिका की आलोचना का भारत ने दिया जवाब। भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अमेरिकी सांसद की आलोचना की। खारिज करते हुए कहा कि विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कई देशों जिसमें अमेरिका में विदेशी फंड और विदेशी वित्त पोषण की नियंत्रण करने वाले कानून मौजूद हैं। दिल्ली NCR में लगातार बारिश से जलभराव से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में 15 वर्षों में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई और इस अवधि में बारिश का आंकड़ा लगभग 127 मिलीमीटर तक पहुंच गया। नीट पेपर लीक मामले में CBI की जांच में नया खुलासा। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले की जांच में CBI ने कथित तौर पर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन और माई गेट एंट्री रिकॉर्ड जैसे डिजिटल सुरागों का इस्तेमाल कर मामले की खरिया जोड़ने में सफलता हासिल की। मामले में जांच और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। ये मामला देश भर में परीक्षा व्यवस्था और उसकी सुरक्षा को लेकर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन से भी जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लश्कर कमांडर के खिलाफ भरा अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के स्वयंभू कमांडर मोहम्मद लतीफ भट्ट की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों में इसकी फौजदार लगाई और उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले के लिए 15 लाख के इनाम की घोषणा की है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार पर। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य तीनों देशों के बीच सामूहिक रक्षा और डिटरेंस को मजबूत करना है। हालांकि तीनों देशों ने इसे किसी एक देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन के रूप में पेश नहीं किया है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान वार्ता में उम्मीद। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समझौते की दिशा में प्रगति की खबर है। AP के अनुसार ईरान और ओमन समझौते के अंतिम चरण के करीब पहुंचने की बात कह चुकी है। लेबनान इसराइल के बीच हिजबुल्ला डिसआर्मामेंट पर बातचीत। लेबनान और इसराइल के बीच हिजबुल्ला को हथियार छोड़ने और दक्षिणी लेबनान से इसराइली सैन्य वापसी से जुड़े मुद्दे पर बातचीत जारी है। दोनों पक्ष अभी भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अलग अलग रुख रखते हैं। अमेरिका के मध्यस्थता में चल रही प्रक्रिया में हिजबुल्ला ने निरस्त्रीकरण की निगरानी के लिए किन देशों की सेनाएं भेजी जाएगी, इस पर भी चर्चा हो रही है। थाईलैंड में स्कूल शूटिंग में दहला देश। थाईलैंड के बैंकॉक के बाहर एक स्कूल में एक किशोर द्वारा की गई गोलाबारी में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई। रोचर्स के अनुसार हमलावर ने पहले अपने घर पर अपनी दादा दादी की हत्या की और फिर स्कूल में 5 लोगों को गोली मारी। हमले

कई लोग घायल भी हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रुक करते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित अरुणाचल टाइम्स अखबार के मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। गवर्नमेंट टू ट्रांसफॉर्म स्टेट्स रिच हैंडलूम ट्रेडिशन इनटू वाइब्रेंट इकोनॉमिक सेक्टर सीएम। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध हथकरघा परंपरा को एक जीवंत आर्थिक क्षेत्र में बदलने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार राज्य की अनूठी आदिवासी विरासत को संरक्षित करते हुए पारंपरिक बुनाई को आधुनिक डिजाइन, उद्यमिता और वैश्विक बाजार तक पहुंच से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। डीए लॉन्चेस ड्राइव टू फ्री गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम एनक्रोचर्स। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट शहरी इलाके में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए एक अभियान शुरू किया है। गुरुवार को जिला प्रशासन, जमीन राजस्व विभाग और पुलिस ने पासीघाट मुख्य बाजार में एक संयुक्त अभियान चलाया और सरकारी जमीन पर बने कई संरचनाओं को हटाया। रेसिडेंसी एंड फिल्म चैलेंजेस गेट अंडरवे एट आरजीयू। शुक्रवार को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ट्रैक्शन 2026 रेसिडेंसी और फिल्म चैलेंज शुरू हुआ। ये 15 दिन का रेसिडेंसी प्रोग्राम है जिसका मकसद डिजिटल स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग के जरिए अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन उद्योगों और अनोखी पहचान को बढ़ावा देना है। इप्सा एक्सटेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू 5 फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अरुणाचल प्रदेश की इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी इप्साप ने बाढ़ से प्रभावित 5 जिलों को 15.26 लाख रुपए की मानवीय सहायता दी है। इप्साप के अनुसार पापुमपरे को 2.05 लाख रुपए, कई पंजोर को 3.50 लाख रुपए, लपारादा को 3.14 लाख रुपए, लोअर सियांग को 3.14 लाख रुपए और ईस्ट सियांग को 3.16 लाख रुपए मिले। इप्साप की जनरल सेक्रेटरी माया मूर्तम ने बताया कि यह फंड राज्यभर में इप्साप की अलग अलग जिला इकाइयों और केंद्रीय इप्साप के योगदान से इकट्ठा किया गया है। फोर उल्फा आई मिलिटेंट सरेंडर इन लोंगडिंग। शुक्रवार को भारत म्यांमार सीमा के पास लोंगडिंग जिले के वक्का सर्किल से में चुपगांव ट्रैक इलाके में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा आई के 4 सक्रिय सदस्यों ने असम राइफल्स के सामने सरेंडर कर दिया। कोऑर्डिनेटिंग मीटिंग ऑन एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप। इस साल 5 से 9 अक्टूबर के बीच सियांग जिले में होने वाले आगामी एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 के सिलसिले में शुक्रवार को यहां सर्किट हाउस में एक शुरुआती समन्वय बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कमिश्नर ताई तागू ने किया। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन 8 अगस्त। यहां देहरानाटन गवर्नमेंट कॉलेज में 8 अगस्त को रात 8 बजे से 9 बजे के बीच सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल और पूरे शहर में इमरजेंसी के तैयारी से जुड़ी एक एक्सरसाइज की जाएगी। आईसीआर के डीसी तोको बाबू ने एक बयान में कहा कि इस एक्सरसाइज का मकसद इमरजेंसी की स्थितियों में अलग अलग सरकारी विभागों, सुरक्षा बलों, इमरजेंसी सेवाओं और आम लोगों के बीच तैयारी और तालमेल का आकलन करना है। इस ड्रिल के तहत रात 8 बजे एयर रेड सायरन बजाया जाएगा और उसके बाद रात 8 बजे से 8:15 बजे तक पूरे ईटानगर कैपिटल रीजन में 15 मिनट के लिए ब्लैक आउट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का न्यूज सेगमेंट। आइए रुक करते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत उषा खन्ना और सुनिधि चौहान की आवाजों में, फिल्म दिल परदेसी हो गया से।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का मॉर्निंग इंफरटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

और दिल को छू लेने वाले गीतों से, जिनकी मधुर धुनें आपकी थकान मिटाएगी, यादों को ताजा करेगी और चेहरे पे मुस्कान ले आएगी। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के मौसम का हाल। अभी ईटानगर में हल्की बारिश दर्ज हो रही है और तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस है और दिन में मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद नहीं है। बीच बीच में बारिश की बौछारें आती जाती रह सकती हैं और दोपहर के आसपास तापमान बढ़कर लगभग 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। दोपहर से शाम की यदि हम बात करें तो बारिश की संभावना बनी रहेगी। कुछ समय के लिए बारिश रुक सकती है, लेकिन बादल फिर गिर सकते हैं और दोबारा बौछारें पड़ने की संभावना है। इसलिए आज बारिश वाला मौसम यानी रुक रुक कर रहने की उम्मीद है। शाम के बाद भी बादल बने रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। रात का तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो दोस्तों, आज का मौसम बादल बने रहेंगे, रुक रुक कर बारिश की संभावना, दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। यदि आप बाहर निकले तो अम्ब्रेला साथ रखना बेहतर रहेगा। तो ईटानगर वालों, आज मौसम थोड़ा बारिश वाला है। चाय गर्म रखिए, छाता साथ रखिए और मौसम का मजा लेते रहिए। अब इसी सुहाने मौसम के साथ सुनते हैं एक खूबसूरत सदाबहार गीत, सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर।

दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सदा बहार। आइए इस कार्यक्रम के अंत में एक और खूबसूरत गीत सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

0: दोस्तों, इसी के साथ आज का सदाबहार कार्यक्रम यही समाप्त होता है। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।

0: अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जानने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
2: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट।
3: यूपीआई के जरिए लेनदेन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए यूपीआई सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। पीसीआई ने कहा है कि यूपीआई देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेनदेन को देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी यूपीआई उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू है।
4: We have seen the comments.
5: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
4: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
5: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आप

0: का फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर ओपीडी रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के ओपीडी में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, एनटीए के ही तीन विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, सीबीआई का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते टेली

0: ग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते। एनटीए के तीन विशेषज्ञ मास्टरमाइंड कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, एनटीए के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई घनघोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर जल भराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी। एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honors, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership and also discussed the current situation in West Asia. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, और शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम हेलो ईटानगर के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स OTT ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स OTT ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी

0: आपकी पहचान अब पूरे भारत के नाम।
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, सुबह का वक्त होता है कुछ ऐसा है, ठंडी ठंडी हवा, चेहरे पे सूरज की हल्की सी गर्माहट, चाय की प्याली, और अगर साथ में रेडियो पर बज रहा हो कोई प्यारा सा संगीत, तो फिर सुबह बन जाती है बिल्कुल खास। लेकिन हेलो ईटानगर, मैं सिर्फ संगीत ही नहीं, आज की सुबह के लिए लेकर आएंगे हम खाम की बातें, इतिहास की रोचक कहानियां और ज्ञान से भरपूर जानकारियां। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के टुडे इन हिस्ट्री पर एक नजर। सबसे पहले भारत के नजरिए से हम देखते हैं वर्ष 1984, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित, गांधी जी का करो या मरो संदेश। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक बैठक हुई। इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन के तत्काल अंत की मांग करते हुए जनता को करो या मरो का संदेश दिया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि लक्ष्य केवल सीमित राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष का निर्णायक चरण बना। ऐसी ऐतिहासिक घटना के कारण ग्वालिया टैंक मैदान के बाद में अगस्त क्रांति मैदान कहा जाने लगा। वर्ष 1942 को ही भूमिगत कांग्रेस रेडियो की पृष्ठभूमि बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सेंसरशिप के कारण स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी सूचनाएं जनता तक पहुंचाना कठिन हो गया। इसी माहौल में उषा मेहता और उनके साथियों ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो चलाया, जिसने ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर समाचार और आंदोलन से जुड़े संदेश प्रसारित किए। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो और संचार के साहसिक इस्तेमाल का ऐतिहासिक उदाहरण था। वर्ष 1985, सोवियत संघ ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। भारत पर भी इसका असर। 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हुई। अगले दिन नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया और कुछ ही दिनों बाद जापान ने आत्मसमर्पण की दिशा में कदम बढ़ाया। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मित्र राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। रुक करते हैं विश्व इतिहास की ओर। वर्ष 1967, आसियान की स्थापना। 8 अगस्त वर्ष 1968 को बैंकॉक में आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना हुई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने आसियान डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। वर्ष 1963, ब्रिटेन की प्रसिद्ध ग्रेट ट्रेन रॉबरी। 8 अगस्त वर्ष 1963 को ब्रिटेन में एक ट्रेन डकैती हुई, जिसे बाद में ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना गया। लुटेरों ने एक मेल ट्रेन को रोककर लगभग 24 लाख पाउंड की रकम लूट ली। यह ब्रिटेन के अपराध इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक मानी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का शुरुआती वैज्ञानिक इस्तेमाल। 8 अगस्त 1975 को वैज्ञानिक वैलेस स्मिथ ब्रोकर का एक शोध पत्र साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था क्लाइमेट चेंज, वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ प्रोनाउंस ग्लोबल वार्मिंग। इसी प्रकाशन को ग्लोबल वार्मिंग शब्द के शुरुआती प्रमुख वैज्ञानिक इस्तेमालों में गिना जाता है। आज जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि पर पूरी दुनिया में चर्चा होती है, इसलिए यह तारीख वैज्ञानिक इतिहास में भी दिलचस्प है। अट्ठासी को म्यांमार के तत्कालीन रंगून में छात्रों के नेतृत्व में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन

शुरू हुआ। तो दोस्तों, आज अगस्त का इतिहास भारत के लिए खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 1942 में इसी तारीख को मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो का संदेश दिया। इतिहास की हर तारीख हमें बताती है कि बदलाव अचानक नहीं आता, उसके पीछे लोगों का साहस, संघर्ष और दृढ़ संकल्प होता है। इसी ऐतिहासिक जानकारी के साथ अब समय है एक खूबसूरत सुकून भरे गीत का। बने रहिए हेलो ईटानगर में।

दोस्तों, हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। फिल्म इतिहास से आवाज दी है अनुराधा पौडवाल और हरिहरन ने।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का हेलो ईटानगर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और उस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के

0: reviewed various ongoing initiatives of the ministry and discussed implementation priorities to ensure their timely and effective execution. The first formal talks between the Jharkhand government and the students' delegation were held late yesterday evening amid ongoing agitation over alleged irregularities in the JPSC and JSSC examinations. Meanwhile, the investigation into the matter and political activities surrounding the issue have also gathered pace. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan and Odisha today. According to IMD, thunderstorm accompanied with lightning and gusty winds are expected to prevail over Lakshadweep, North Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. In badminton, Indian shuttler Ashmita Chaliha will face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles semi-finals of the Korea Masters Super 300 tournament in Assam this morning. Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj won their respective quarterfinal matches to advance to the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से ये दिल की बात। हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
2: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, ये वो शो है जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी ताजा तरीन खबरें, नए गॉसिप्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है, इन सब सारे बातों को हम इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए देखते हैं आज के ताजा तरीन फिल्मी गपशप पर एक नजर। रामायण को लेकर आज सबसे बड़ा अपडेट, भारत में रिलीज 2 दिन बाद। आज सुबह की सबसे बड़ी खबरों में से एक है नीतीश तिवारी की रामायणा। निर्माता नमित मल्होत्रा ने बताया कि फिल्म का इंटरनेशनल रिलीज 6 नवंबर 2026 को होगा, जबकि भारत में फिल्म 8 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। यानी भारतीय दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के 2 दिन बाद फिल्म देखने को मिलेगी। फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त उत्सुकता है और ये घोषणा इसकी ग्लोबल स्ट्रेटेजी को और बड़ा बनाती है। रामायण की कहानी अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने वाली, मेकर्स इसे ग्लोबल सिनेमा का बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी में है। रामायण का 50,000 इंटरनेशनल स्क्रीन वाला प्लान। रामायण के मेकर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में करीब 50,000 स्क्रीन्स के ग्लोबल रोल आउट की योजना बताई है। साथ ही इंग्लिश लिप सिंक ट्रेलर भी सामने आया है। ये भारतीय फिल्मों के लिए इंटरनेशनल स्केल पर एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है।

यश आज टॉक्सिक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में है। आज यश की टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। इसके लिए बेंगलुरु में बड़े इवेंट की तैयारी की गई है। फिल्म के नए पोस्टर्स पहले से ही ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ा चुकी हैं और आज का ट्रेलर लॉन्च इस फिल्म की अगली बड़ी प्रमोशनल माइलस्टोन है। यश बने टॉक्सिक के डिस्ट्रीब्यूटर भी। टॉक्सिक को लेकर एक और दिलचस्प अपडेट सामने आया है। यश सिर्फ एक्टर और प्रोड्यूसर की भूमिका तक सीमित नहीं है, उनका बैनर मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन केवियन प्रोडक्शन के साथ मिलकर कर्नाटका में फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है। यानी यश अब फिल्म के बिजनेस साइड में भी बड़ा कदम उठा रहा है। लव एंड वॉर के फर्स्ट लुक्स पर इंडिपेंडेंस डे पर बड़ा धमाका। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल के लव एंड वॉर को लेकर इंडस्ट्री में जबरदस्त बज है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की तीनों मुख्य कलाकारों के फर्स्ट लुक्स 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे पर सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस साल के सबसे बड़े प्रमोशनल मोमेंट्स में से एक होगा। 15 अगस्त को देशभक्ति के साथ साथ अगर रणवीर, आलिया, विक्की का फर्स्ट लुक भी मिल जाए तो वो बॉलीवुड फैंस के लिए इससे बड़ा इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट क्या होगा। दोस्तों, हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद और भी बातें करेंगे बॉलीवुड के ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। बने रहिए सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।

दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। हुमा कुरैशी ने शादी की अफवाहों पर दिया जवाब। हुमा कुरैशी की शादी को लेकर लगातार चल रही चर्चाओं पर अब अभिनेत्री ने खुद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ अंदाज में कहा कि जब शादी होनी होगी तब हो जाएगी, यानी फिलहाल उन्होंने शादी की किसी कन्फर्म अनाउंसमेंट की पुष्टि नहीं की है। ये बयान आज एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में काफी चर्चा में है। प्रदीप रावत की प्रेयर मीट में बेटे विक्रमादित्य बाबुक। दिवंगत अभिनेता प्रदीप रावत की प्रेयर मीट में उनके बेटे विक्रमादित्य रावत अपने पिता को याद करते हुए बाबुक हो गए। उन्होंने पिता की बीमारी के दौर को याद किया और कहा कि

उनके लेगेसी को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। परिवार, दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने वेटरन एक्टर को श्रद्धांजलि दी। मिथुन चक्रवर्ती अस्पताल में भर्ती। वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता में हॉस्पिटलाइज किया जाने की खबर आज सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी एक माइनर सर्जरी हुई है। वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी ने भी अस्पताल जाकर उनके हेल्थ अपडेट की जानकारी साझा की। ये खबर सामने आने के बाद मिथुन दा के पेरेंट्स उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आलिया भट्ट बनी भारत की सबसे वैल्यूएबल फीमेल सेलिब्रिटी ब्रांड्स में नंबर वन। क्रॉल सेलिब्रिटी वैल्यूएशन 2025 रिपोर्ट के आधार पर आलिया भट्ट की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू लगभग 93.9 मिलियन बताई गई है और वे भारत के टॉप रैंक्ड फीमेल सेलिब्रिटी के रूप में सामने आई है। शाहरुख खान की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू फिर चर्चा में। नए क्रॉल वेस्ट रैंकिंग के अनुसार शाहरुख खान इंडिया के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड में शीर्ष पर हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू लगभग 177.9 मिलियन बताई गई है। उनके बाद रणबीर सिंह, विराट कोहली और आलिया भट्ट जैसे बड़े नाम रैंकिंग में दिखाई देते हैं। किंग खान का जलवा सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक नहीं, ब्रांड्स की दुनिया में भी एसआरके का बादशाहत वाला दौर जारी है। दोस्तों, हम और भी बातें करेंगे बॉलीवुड से जुड़े और अपडेट्स के साथ। फिलहाल लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart powered tailgate with gesture control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों इस वक्त आप बने हुए हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप में आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। रवीना टंडन और ओ माय डॉग का फनी मोमेंट वायरल। रवीना टंडन ने पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय डॉग की स्पेशल स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। वह फिल्म के कनाइन स्टार के साथ उनका एक मजेदार मोमेंट कैमरे में कैद हुआ। कुत्ते ने उन्हें लगभग काटने की कोशिश की और रवीना को रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म देखने गई थी रवीना, लेकिन लगता है रेड कार्पेट पर चार पैरों वाले स्टार ने ही पूरी लाइमलाइट चुरा ली। ओ माय डॉग को लेकर सेलिब्रिटी सपोर्ट, पंकज त्रिपाठी की इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। खासकर फैमिली ऑडियंस के बीच फिल्म के एनिमल सेंट्रिक थीम की वजह से चर्चा में है। रवीना टंडन का स्क्रीनिंग मोमेंट भी इसी बज को और बढ़ा रहा है। आवारापन 2 ट्रेलर के बाद इमरान हाशमी फिर स्पॉटलाइट में। कल रिलीज हुई आवारापन 2 ट्रेलर का असर आज भी एंटरटेनमेंट सर्कल्स में बना हुआ है। लगभग 19 साल बाद इमरान हाशमी को फिर शिवम पंडित के रूप में देखने को लेकर फैंस में काफी नॉस्टैल्जिया है। ट्रेलर में डार्क रिवेंज और इंटेंस रोमांटिक ड्रामा का फ्लेवर दिखाई देता है। ये कवर कल की ट्रेलर रिलीज कवर से अलग आज के फर्स्ट ट्रेलर बज के रूप में देखी जा सकती है। राजकुमार राव की प्रहार की रिलीज डेट को लेकर बदलाव। राजकुमार राव और वमिका गब्बी की कोर्टरूम ड्रामा प्रहार को लेकर रिलीज डेट में बदलाव की खबर सामने आई है। फिल्म को पहले 7 अगस्त को थिएटर में आना था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी थियोरेटिकल रिलीज पोस्टपोन कर दी गई है, इसलिए दर्शकों को अब नई तारीख के ऑफिशियल कन्फर्मेशन का इंतजार है। राजकुमार संतोषी ने बतवारा 1947 में सनी देओल के कैरेक्टर को लेकर बड़ा दावा किया। हालांकि बतवारा 1947 की प्रमोशन पहले से चल रही है, आज उससे जुड़ा एक नया बयान चर्चा में है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने सनी देओल के कैरेक्टर को अपने लिखे सबसे बहादुर कैरेक्टर्स में से एक बताया और बेहद उच्च शब्दों में उसकी ताकत और पर्सनैलिटी की तारीफ की। ये बयान फिल्म के इंडिपेंडेंस डे वीकेंड बज को और बढ़ा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का ताजा तरीन बॉलीवुड अपडेट। से इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम लौटेंगे छोटे पर्दे के खबरों के साथ। बने रहिए फिल्मी गपशप पर।

दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। आइए रुक करते हैं छोटे पर्दे की ओर। जिया शंकर की एंगेजमेंट ने मचाई धूम। आज टीवी वर्ल्ड की सबसे चर्चित खबरों में जिया शंकर की एंगेजमेंट है। बिग बॉस ओटीटी 2 से लोकप्रिय हुए जिया ने यूएस बेस्ड बिजनेसमैन करण धनक के साथ अपने रिश्ते का ऑफिशियल करते हुए एंगेजमेंट की तस्वीरें शेयर की हैं।

छमोला एलिमिनेट हुई। उनके एलिमिनेशन के बाद ट्रॉफी की दौड़ और भी दिलचस्प हो गई थी। कतरों के खिलाड़ी 15 में फरहाना भट्ट का खुलासा। फरहाना भट्ट ने कतरों के खिलाड़ी 15 के अपने अनुभव पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि शो की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण उन्हें रोज एंजाइटी महसूस होती थी, लेकिन इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें अपने डर का सामना करना भी सिखाया। उन्होंने होस्ट रोहित शेट्टी से मिले एनकरेजमेंट और कंटेस्टेंट रुबीना डिलिया के साथ उनकी बॉन्डिंग की भी तारीफ की। फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना की इक्वेशन फिर चर्चा में। कतरों के खिलाड़ी 15 में फरहाना भट्ट और गौरव खन्ना की इक्वेशन पहले से ही व्यूअर्स का ध्यान खींच रही है। फरहाना ने एक इंटरव्यू में गौरव से जुड़े विवाद और शगुन शर्मा के विलिंग एलिगेशन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा इंसिडेंट नहीं देखा था, लेकिन कुछ रिमार्क्स उन्हें सीमा पार करते हुए लगे। साथ ही उन्होंने गौरव और आकांक्षा छमोला की पर्सनल लाइफ को लेकर प्राइवेसी की अपील की। दोस्तों, हम लौटेंगे इस छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिल्मी गपशप में। बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: दोस्तों, हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद। बने रहिए कार्यक्रम फिल्मी गपशप में।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे की अपडेट्स पर। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ला रहे हैं नया गेम।

शो, टीवी के फेवरेट कॉमेडी कपल भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया अब एक नए सेलिब्रिटी गेम शो के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने जा रहे हैं। शो का नाम है इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष। इसमें सेलिब्रिटीज के बीच गेम्स, चैलेंजेस और कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा। इंडियन गेम शो की प्रीमियर डेट भी सामने आई। इस नए शो को लेकर अब काफी स्पष्टता आ गई है। उपलब्ध प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इंडियन गेम शो विद भारती एंड हर्ष 24 अगस्त से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे प्रसारित होगा। शो से जुड़े प्रमोशनल क्लिप्स भी सामने आ चुके हैं, यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में टीवी व्यूअर्स को एक नया फैमिली एंटरटेनमेंट ऑप्शन मिलने वाला है। गेम शो में कई टीवी सेलिब्रिटीज की मौजूदगी। नए गेम शो की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि इससे जुड़े प्रमोशनल मटेरियल में कई लोकप्रिय एंटरटेनमेंट पर्सनालिटीज दिखाई दे रही हैं। अनीता हसनंदनी, करण पटेल, टोनी कक्कर और दूसरे सेलिब्रिटीज के नाम अपीयरेंस भी चर्चा में हैं। आज की हिंदी टेलीविजन कवरेज में जिया शंकर के एंगेजमेंट लॉकअप 2 का फिनाले और कतरों के खिलाड़ी 15 लगातार प्रोमिनेंट टॉपिक्स बने हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के करंट हिंदी टीवी पेज पर भी ये स्टोरीज प्रमुखता से दिखाई दे रहे हैं। तो आज एंटरटेनमेंट टेलीविजन का मुकाबला सिर्फ एक सीरियल बनाम दूसरे सीरियल का नहीं रहा। रियालिटी शो, सेलिब्रिटी गेम शो, ओटीटी रियालिटी फॉर्मेट और सोशल मीडिया ड्राइव इन सेलिब्रिटी कंटेंट सभी एक ही ऑडियंस का ध्यान खींच रहे हैं। तो दोस्तों, आज छोटे पर्दे पर प्यार भी है, कंपटीशन भी है और डर भी है और एंटरटेनमेंट का भरपूर थरका भी। जिया शंकर की एंगेजमेंट से लेकर श्रेया कलरा की लोकअप विक्ट्री और भारती हर्ष की नए गेम शो तक टीवी की दुनिया इस वक्त बिल्कुल शांत नहीं है। और याद रखिए, बड़े पर्दे की खबरें हो या छोटे पर्दे की गपशप, ओटीटी का धमाका हो या रियलिटी शो का ड्रामा, फिल्मी गपशप में एंटरटेनमेंट की कोई खबर आपसे छूटने नहीं देंगे। फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं पुकार फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत जिसे गाया है शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति ने।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईआईटी दिल्ली ने अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस अग्रणी संस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों से मुलाकात को लेकर उत्साहित हैं। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान के प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं।
1: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
0: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का आयोजन बीएसई इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उन्होंने इन कार्यक्रमों को समय से और प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की अपनी मांग दोहराई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है।

0: Leha and Rakshita Ramraj won their respective quarter-final matches to advance to the semi-finals. Ashmita pulled off the biggest upset of the tournament, defeating top seed and world number 22 Hina Akechi of Japan. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओ भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों हम लौटेंगे आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कार्यक्रम है जहां आपके मैसेजेस बन जाते हैं हमारे कार्यक्रम का मेन हिस्सा। आप लिखते हैं अपना नाम, अपने जगह, अपनी पसंद का गाना, और अगर किसी खास दोस्त परिवार के सदस्य अपने किसी खास इंसान को डेडिकेट करना चाहते हैं तो उनका नाम भी जरूर लिख भेजिए। दोस्तों, आप हमें मैसेज में अपना नाम, अपने पता, फिल्म का नाम और सिंगर का नाम लिखना जरूर ना भूलें। तो देर ना करते हुए आइए लेते हैं आज का पहला मैसेज, और ये मैसेज हमें आया है कुसुम पंगिंग रुकसिन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से। कुसुम जी ने हमें फरमाइश की है तेजाब फिल्म से 1-2-3 गीत को सुनने का। और दोस्तों, इसी गीत को हमारे एक और श्रोताओं ने भी फरमाइश की है जिनका नाम है ज्योति गौर। तो ज्योति गौर और कुसुम पांगिंग जी, आप दोनों के लिए आज का ये रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ने एक ही गीत को हमें सॉन्ग फरमाइश की है। तो आप दोनों के नाम आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है लखीमपुर असम से मोनालिसा सोनोवाल की तरफ से। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है लक्ष्य फिल्म का कंधों से मिलते हैं कंधे गीत को सुनने का। इस गीत को

हे शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार राठौड़, कुणाल गांजावाला और विजय प्रकाश ने। तो मोनालिसा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर। यह मैसेज हमें आया है निर्जुली अरुणाचल प्रदेश से, तुलसी पुकोन जी की तरफ से। तुलसी जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है रिप्यूजी फिल्म का, मेरे हमसफर गीत को सुनने का। गीत को गाया है सोनू।

निगम और अलका याग्निक ने। दोस्तों, इस गीत में सफर, साथ और मोहब्बत का बड़ा ही खूबसूरत एहसास है। तुलसी फुकन जी, आपकी इस प्यारी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड पर। हम लौटेंगे इस छोटी सी अंतराल के बाद, बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड पर। और दोस्तों, अब बारी है असम से आई एक और शानदार फरमाइश की। ये प्यारा सा मैसेज भेजा है और की गोस्वामी ने, ज्योतिपुर असम से। और की जी, अरुण एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फरमाइश है पुष्पा द राइज फिल्म से तेरी झलक गीत को सुनने का। हालांकि ये बॉलीवुड फिल्म का गाना नहीं है, लेकिन आपकी पिछले रिक्वेस्ट को देखते हुए एक छोटी सी याद दिला दी। रेडियो डिमांड में हम मुख्य रूप से बॉलीवुड हिंदी फिल्म के सॉन्ग को ही फरमाइश लेते हैं। तो और कीजिए, आपकी इस प्यारी सी फरमाइश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं जावेद अली की आवाज में पुष्पा द राइज फिल्म से ये गीत।

दोस्तों, रेडियो डिमांड कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है रोमेश पात्रो, रुनु पात्रो और लकी ने गोलाघाट असम से। आप तीनों का अरुण एफएम पर बेहद स्वागत है। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है परिचय फिल्म से मुसाफिर हूँ यारो गीत को सुनने का, और आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों बाइकोन भीमल देवाशीष हितेंद्र जोगेंद्र सोनाली और अंजलि को। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। दोस्तों, मुसाफिर हूँ यारो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी को खुले दिल से जीने और लगातार आगे बढ़ते रहने का एक खूबसूरत एहसास है। तो रोमेश, रूनू और लक्की जी, आपके इस शानदार फरमाइश और इतने सारे दोस्तों के नाम किए गए डेडिकेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: दोस्तों, हम लौटेंगे रेडियो निर्माण कार्यक्रम के अगले मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमें आया है अमाल बासुमतारी जी की तरफ से, चुनाई मैसाकी सपोरी धेमाजी आसाम से। अमाल जी, अरुण एफएम पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस गीत को डेडिकेट किया है आपके दोस्तों रमेश अंजलि हितेंद्र देवाशीष को, और आपने गीत चुना है बिच्छू फिल्म का प्यार तू दिल तू गीत को सुनने का। तो अमाल जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों बढ़ते हैं रेडियो डिमांड कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें आया है जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगतिफी और दोरमकिरी रोंगपी जी की तरफ से सारिहा जान कार्बी आंगलोंग असम से। आप तीनों का आरोन एफएम पर बेहद स्वागत है। आपने हमें सॉन्ग फरमाइश की है इंतकाम फिल्म से हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए गीत को सुनने का। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। दोस्तों लता जी और रफी जी की आवाज का ये खूबसूरत संगम प्यार और अपनापन के लिए है। पुरानी हिंदी फिल्म संगीत की यही तो काशियत है। सदा बोल मधुर धुन और

और ये मैसेज हमें आया है मोपथू ईटानगर से भेजने वाले हैं लपसंग सेरिंग जी। लपसंग जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है बॉर्डर टू फिल्म का प्यारी लगी गीत को सुनने का। लपसंग जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो निर्माण कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज के पहले प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। हर रोज दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आगे के सफर में आपके साथ होंगे आरजे आता वांगसु जी। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। 3000 से अधिक विद्यार्थियों में स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों सहित 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। ये आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर विषय शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री शाह निगम के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। सम्मेलन का आयोजन

ESE इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी महासंघों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। सम्मेलन में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करने और देश में आत्मनिर्भर सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कल रात शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बैठक में मंत्रालय के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पार आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। अमरीकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंड से ओ ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। पूर्वी क्षेत्रीय ट्रेनों के लिए भी ओणम विशेष सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। उनका निधन 7 अगस्त

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़
2: तेरे दिल का मेरे दिल से।
3: नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे आकाशवाणी के डेली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। अब वक्त हो चला है आप सबको लिए चलने

का हमारे दूसरी प्रसारण सभा में मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ। दोस्तों सबसे पहले दिल से शुक्रिया हमारे आरजे कारगरीबा का, जिन्होंने अपने खूबसूरत अंदाज में आपसे बातें की और अब बड़े प्यार से स्टूडियो की कमान हमें सौंप दी है। और मेरे साथ इस प्रसारण को संभाल रहे हैं हमारे प्रसारण अधिकारी श्री गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता श्री नंद कुमार। दोस्तों बाहर बारिश हो रही है और रेडियो पर गीत बज रहे हो तो भला दिल को यादों की गलियों में जाने से कौन रोक सकता है। बारिश की बूंदे कभी बचपन की शरारतें याद दिलाती है, कभी भीगी सड़कों पर गुजरा कोई खूबसूरत पल, कभी दोस्तों के साथ बिताए वो बेफिक्र समय, और कभी कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही लगता है अरे ये तो हमारी ही कहानी कह रहा है। तो आज के इस बरसाती माहौल में हम भी चलेंगे यादों की उसी खूबसूरत राह पर जहां बारिश होगी, संगीत होगा और होंगे कुछ पुराने नए एहसास। दोस्तों हमारे आज के पहले संगीत में सफर का नाम है फिल्मी लहर। जी हाँ, बाहर ऐसी लहर है कि मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा और हमारी कोशिश आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यही है कि आपके इस बेचैन दिल को किस तरह से शांत किया जाए खूबसूरत गीतों के साथ। तो चलिए आरजे नूरी के साथ आगे बढ़ते हैं फिल्मी लहर में। दोस्तों फिल्मी लहर इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे जिंदगी में हर मौके के लिए, हर एहसास के लिए हमारी हिंदी सिनेमा कोई गीत बना ही देता है। और ये सावन का मौसम चल रहा हो और बारिश का माहौल हो तो ऐसे में फिल्मों के उन गीतों को आज हम याद करेंगे जो हमें मेघा, बादल, बरसात, बारिश, सनम, जाने मन, दिल, इंतजार, कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और हमारी जिंदगी का नाता जोड़ देंगे। चलिए फिल्मी लहर में सुनते हैं पहला ये गीत बरसात से रिलेटेड, यानी कि बारिश से रिलेटेड। और इस वक्त अगर आप सुन रहे हैं हमें गाड़ी चलाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए और बारिश की बूंदों को अपनी गाड़ी की खिड़कियों पर महसूस करते हुए, तो आपके दिल में जो बेचैनी है ना उसे शांत जरूर कर देगा और आपके सफर को सुहाना बना देगा। चलिए फिल्मी लहर में ये पहला गीत आपके लिए।

दोस्तों फिल्मी लहर की शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ हो चुका है आकाशवाणी के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेघा, बादल, बरसात, रिमझिम, प्यार, मोहब्बत, यादें, कई सारी चीजें। छा गए बादल चित्रलेखा फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना। क्या खूबसूरत गीत था, जैसे बारिश की हर बूंद के साथ कोई पुरानी याद भी मन की खिड़की पर दस्तक दे रही हो। दोस्तों बारिश की यही तो खासियत है, मौसम कुछ घंटों का होता है लेकिन उससे जुड़ी यादें बरसों तक हमारे साथ रहती है। कभी कोई गीत सुनकर हमें अपना बचपन याद आ जाता है, तो कभी कॉलेज के दिन, कभी दोस्तों की महफिल, और कभी बस एक ऐसा पल जिसे हम दोबारा जी तो नहीं सकते लेकिन एक गीत के जरिए महसूस जरूर कर सकते हैं। तो बारिश को यूं ही बरसने दीजिए, यादों को यूं ही लौटने दीजिए और हमें भी कुछ देर इन खूबसूरत धुनों के साथ बहने दीजिए, क्योंकि फिल्मी लहर का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बस शुरू हुई है। चलिए अगला गीत आपके मन तक पहुंचने के लिए बेकरार है।

0: Attention, Pari Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी लहर में आरजे नूरी के साथ। दोस्तों कार्यक्रम अभी जारी है, अभी तो बारिश की कई बूंदे बाकी है, कई यादें बाकी है और कई सुरीले नगमे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं इस बरसाती सफर को एक और खूबसूरत गीत के साथ। अगला गीत बारिश प्यार और उस मासूम सी शरारत के नाम जो बरसात के मौसम को और भी यादगार बना देती है। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर फिल्मी लहर।

दोस्तों, बारिश की बूंदों के साथ शुरू हुआ फिल्मी लहर का ये खूबसूरत सफर अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। इन कुछ पलों में हमने महसूस कि बारिश की रिमझिम, पुरानी यादों की खुशबू, प्यार की हल्की सी गर्माहट और बॉलीवुड के उन सुरीले नगमों को जिन्होंने बरसात को कभी इश्क बनाया, कभी शरारत तो कभी एक खूबसूरत याद। उम्मीद है बाहर बरसती बारिश और रेडियो पर बजते इन गीतों ने आपके इस दिन को थोड़ा और खूबसूरत बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, संगीत का ये महफिल कभी अभी थमी नहीं है, बस अब बदल रहा है इसका अंदाज, बदल रही है धुनें और बदल रहा है संगीत का रंग। जी हाँ, बॉलीवुड की गलियों से निकलकर हम पहुंचेंगे वेस्टर्न मेलोडीज की दुनिया में, जहां होंगे खूबसूरत धुनें, मधुर आवाजें और कुछ ऐसे सदाबहार वेस्टर्न गीत जिन्हें सुनते ही मूड अपने आप थोड़ा हल्का और दिल थोड़ा खुश हो जाता है। जुड़े रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ। मैं हूँ आप सबके साथ, आप सबकी अपनी रेडियो साथी आरजे नूरी। और अब फिल्मी लहर को यही देते हैं प्यारा सा विराम। बारिश की फुहारों और बॉलीवुड की यादों के लिए शुक्रिया। और अब तैयार हो जाइए वेस्टर्न मेलोडीज के लिए, सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashwani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions and good energy.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath main Jagriti Sharma. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं. आइए सुनते हैं उनका संबोधन.
2: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड. आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी. लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं. दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात

0: याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2rd स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेवेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi is addressing the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi. Earlier, Prime Minister Modi conferred degrees on

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनने के बाद आप सभी का फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियोज में, और मैं हूं आज सफर में आज नूरी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की भागती हुई राहों में हम थोड़ा ठहरना चाहते हैं, किसी पुराने गीत को सुनना चाहते हैं, किसी पुराने तस्वीर को फिर से देखना चाहते हैं, किसी पुराने खत को खोलकर उसके शब्दों में छुपी भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं, और कभी कभी बस किसी अपने के पास बैठकर उनकी बातें सुनना चाहते हैं। आज का हमारा सफर कुछ ऐसा ही है।

आज हम चलेंगे उन गलियों में जहां बचपन की शरारतें हैं, जहां आंगन में परिवार की हंसी गूंजती थी, जहां रेडियो घर का एक प्यारा सदस्य हुआ करता था और जहां हमारे बुजुर्गों की कहानियों में पुराना और पूरा एक जमाना बसा हुआ है। तो दोस्तों, आरजे नूरी के साथ आप सुन रहे हैं यादों की बारात, बुजुर्गों के नाम एक पार्टी।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी एक सफर है। यहाँ कल क्या हो किसने किसी ने कुछ नहीं जाना, लेकिन बस ये तय है कि आज हम जवानी के हिलोरे ले रहे हैं और आज कुछ बच्चे शरारती बच्चे हैं, लेकिन कल को ये बात जरूर तय है कि वो बुजुर्ग हो जाएंगे जिनकी आंखों में बीते कल की अनगिनत कहानियां होंगी, जिनकी मुस्कानों में अनुभव की रोशनी

होगी और जिनकी आवाजों में उनके बचपन की कोई प्यारी सी पुकार जरूर सुनाई देगी। तो दोस्तों, जिंदगी में कल क्या होगा, आज क्या है, कल क्या होने वाला है, आने वाले कुछ पलों में हमारी जिंदगी में क्या होने वाली, ये तो नहीं पता, लेकिन कल आज हम जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे, ये बात तय है। इसलिए दोस्तों, आज हमने एक ऐसा कार्यक्रम सजाया है आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यादों की बारात, बुजुर्गों के नाम एक पार्टी। कहते हैं ना दोस्तों कि घर की दीवारें ईंट पत्थर से बनती हैं, लेकिन घर को घर बनाते हैं उसमें रहने वाले रिश्ते, और उन रिश्तों में हमारे बुजुर्गों की जगह सबसे खास होती है। उनके पास शायद आज की तरह तेज तरार इंटरनेट नहीं था, मोबाइल की स्क्रीन नहीं थी, हर सवाल का जवाब देने वाला सर्च इंजन नहीं था, लेकिन उनके पास था अनुभव, धैर्य, रिश्तों को निभाने का हुनर और छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशी ढूंढ लेने का हुनर। आज की यह पार्टी उनके नाम, जिन्होंने हमें धैर्य रखना सिखाया, जिन्होंने हमें जिंदगी को किस तरह से खूबसूरत ढंग से जिया जाना चाहिए वो सिखाया। तो दोस्तों, बुजुर्गों को सलाम करते हुए और उनको याद करते और उनकी जिंदगी से, उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हुए, उनको, उनकी यादों को ताजा करते हुए, यादों की बारात एक पार्टी बुजुर्गों के नाम में, लीजिए सुनिए एक और खूबसूरत गीत उनके जमाने की।

तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है यादों की बारात, बुजुर्गों के नाम एक छोटी सी पार्टी में पढ़ने का। एक छोटी सी पार्टी यानी कि एक छोटी सी चिट्ठी। हमने ये चिट्ठी बुजुर्गों के नाम लिखा है, यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे तमाम बुजुर्ग श्रोता के नाम है। लीजिए साथ में पढ़ते हैं ये चिट्ठी। प्यारे दादा दादी, नाना नानी और तमाम हमारे बुजुर्ग श्रोताओं के नाम, आपको यह खत किसी डाकिये के हाथों नहीं मिला है, यह पहुंचा है रेडियो की आवाज के जरिए। क्योंकि कुछ खत कागज पर नहीं लिखे जाते, वे सीधे दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। आपने वो जमाना देखा है जब शामें जल्दी उतरती थी और परिवार जल्दी एक साथ बैठ जाता था। जब घर में रेडियो बजता था तो पूरा परिवार उसके आस पास बैठ कर गीत सुना करता था। जब किसी की चिट्ठी आने का इंतजार मोबाइल के नोटिफिकेशन से कहीं ज्यादा खास हुआ करता था। जब तस्वीरें कम होती थी लेकिन यादें बहुत होती थी। जब चीजें कम थी मगर रिश्तों में अपनापन ज्यादा था। और शायद इसलिए आपकी पीढ़ी ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई, खुश रहने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी नहीं, जो है उसमें खुशियां ढूंढना जरूरी है। तो आइए आज की इस यादों की बारात में अगला गीत हमारे बुजुर्गों के नाम।

दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं समय बदल गया है। हाँ, समय बदल गया है, हमारी जीवन शैली बदली है, हमारी तकनीक बदली है, हमारे काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदली और बदलनी भी नहीं चाहिए, अपने बुजुर्गों के लिए हमारा सम्मान और अपनापन। कभी उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनिए, क्योंकि उनके पास यादों का पूरा खजाना भरा हुआ है। किसी के पास गांव के दिनों की यादें हैं, किसी के पास स्कूल के दिनों की शरारतें हैं, किसी के पास पहली नौकरी की कहानी है, तो किसी के पास अपनी शादी के दिनों की मीठी यादें हैं। और कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जिन्हें उम्र भर मिटा नहीं सकती। अगर आपको ऐसे खजाने लूटने हैं तो अपने बुजुर्गों के साथ, अपने उन नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी के साथ जरूर बैठे, उनके पास बैठकर उनकी बातें जरूर सुनिए। हो सकता है कि वही कहानी जो आपने बचपन में कई बार सुनी थी आज आपको कुछ नया सिखा दे। कभी उनके साथ चाय पीजिए और कभी बिना किसी काम के उनसे पूछिए, कहिए आज आपका दिन कैसा रहा। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, कभी कभी किसी बुजुर्ग के लिए एक छोटा सा सवाल भी पूरे दिन की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। अगर आपको भी ऐसी खुशी किसी बुजुर्ग को देना है तो जरूर अपने आसपास के जो अपने हैं, अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ जरूर बैठे। और हमारी कोशिश आकाशवाणी के और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भी यही है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके नाम एक पार्टी जरूर भेजे और उनको उनके यादों से जरूर मिलवाए, उनके जमाने के गीतों के साथ। दोस्तों, इस छोटी सी पार्टी के साथ ही हमारा कार्यक्रम यादों की बारात, एक पार्टी बुजुर्गों के नाम, यही पे समाप्त होता है। लेकिन सफर अभी जारी है आकाशवाणी के एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे से आप, यानी कि अपने रेडियो साथी आरजे नूरी के साथ। अगला कार्यक्रम है हमारे फौजी भाइयों और बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला।

श्रोता दोस्तों, बुजुर्गों के नाम हमने पार्टी पढ़ी, उनकी यादों को ताजा किया। अब वक्त है हमारे फौजी भाइयों और बहनों के सम्मान में पेश करने का उनके लिए सजाया गया एक गीतों का गुलदस्ता, गीतमाला। चलिए बैक टू बैक हम सुनते हैं कुछ हसीन बॉलीवुड नगमे।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माई वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माई वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो जिंदा होती हैं भारत के हर जिले में, लेकिन इन कहानियों को दुनिया तक पहुँचाएगा कौन? अब कैमरा आपके हाथ में और मंच पूरे देश का। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, जहां उभरते डिजिटल क्रिएटर्स दिखाएंगे अपने जिले का कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, टूरिज्म। शुरुआत 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी से। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन इन करें, माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं, जेम्स ऑफ इंडिया प्रोग्राम चुनें, अपनी ओरिजिनल वीडियो और डिटेल्स अपलोड करके सबमिट करें। हर कहानी को मिलेगा एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच वेव्स ओटीटी पर।

0: कार्यक्रम गीतमाला इसी के साथ ही समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुन पाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक उच्च दक्षता की कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राज

0: राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा प्रतिनिधियों के संघ AAERI के साथ साझेदारी में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म AAERI सत्यापन का शुभारंभ किया। मंत्रालय ने बताया कि डिजी लॉकर से जुड़े इस प्लेटफॉर्म के जरिए ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों में आवेदन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पहचान और वित्तीय दस्तावेजों का सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सत्यापन कर सकेंगे। झारखंड सरकार आज जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से बातचीत की। ये बैठक रांची के गेस्ट हाउस में हुई। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ पिछले दो सप्ताह से रांची में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद ये बातचीत हुई है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच कल शाम पहली औपचारिक बैठक हुई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में दो आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए IED, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त है। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के खिलाफ विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलुवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को अपना पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that students graduating today are not merely completing their education but are beginning a new chapter in their lives. He was addressing the 57th convocation ceremony of IIT Delhi today. Mr. Modi urged the graduating students to live the moment to the fullest as they would cherish and miss the memories of their campus life in the years to come. The Prime Minister congratulated the graduating students and wished them success as they embark on a new journey.
2: आज आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है, क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं।
1: The Jharkhand government today held talks with protesting students and job aspirants over alleged irregularities in examinations conducted by the JPSC and JSSC. The meeting began at the State Guest House in Ranchi and 8 members.

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: स्वागत है आपका फिर से आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार सुनने के बाद श्रोता दोस्तों वक्त हो चला है आपको गीतों के सफर में आगे बढ़ाने का। कार्यक्रम हिंदी म्यूजिक यानी कि 60s टू 80s के क्लासिक म्यूजिक के साथ और मैं हूं आप सबके साथ आज के सफर में आरजे नूरी। लीजिए आनंद लीजिए 1960s 1970s और 80s के कुछ हसीन नगमे जो आपकी यादों को और भी खूबसूरत और ताजा बना देगा। दोस्तों हमारी कोशिश आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यही है कि हम करें दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से और हर गीत दिल से दिल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे एहसास जो दिल में कहीं दब कर रह गए हैं और उसे उस एहसास को किस तरह से बयां करें कभी कभार हमें पता भी नहीं चलता और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारे उन दबी हुए एहसासों को बयान कर देते हैं। चलिए 1960s, 70s और 80s के कुछ हसीन नगमों के साथ हम अपने एहसासों को बाहर निकालते हैं।
2: Biggest, latest, Bollywood blockbuster, only on Eurostar.

जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रूपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी सिनेमा के क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s, 70s टू 80s। लीजिए, अगला गीत है तिरछी टोपी वाली फिल्म त्रिदेव से।

तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम हिंदी मूवीज के क्लासिक सॉन्ग्स फ्रॉम 60s, 70s एंड 80s। अगला गीत हम लेंगे फिल्म तेजाब से, जो कि बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है। इट्स अक्रॉस जनरेशंस, इस गीत को हर कोई पसंद करते हैं और इसके पता नहीं कितने सारे वर्जन्स आप सुन चुके हैं, नए पुराने और नए नए लोगों में भी, जैसे रीमिक्सेस बहुत ही पॉपुलर ही इस गीत के।

लेकिन जो ओरिजिनल है ना वो ओरिजिनल ही होता है। लीजिए जो आज के जमाने के जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के रन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ रन एफ एम पर, तो आपको बता दूं कि ये जो सेक्शन है उसमें हम आपको सुनवाते हैं, आपने जो वर्जन सुना होगा नए नए सॉन्ग्स उसके जो ओरिजिनल वर्जन है हम उसको सुनवाते हैं। और अब वक्त है एक दो तीन गीत जो कि बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है। माधुरी दीक्षित को भी इसी गीत के द्वारा ही स्टारडम हासिल हुई थी और इस गीत को आज भी लोग गुनगुनाते हैं और जहां भी कोई फुट टैपिंग म्यूजिक बना या सुनने या बजाने का मन करता है तो ये गीत लिस्ट में जरूर होता है। तो आज मेरे लिस्ट में यानी कि हिंदी मूवीज के क्लासिक म्यूजिक फ्रॉम 60s, 70s और 80s में शामिल हो गया है। लीजिए सुनिए एक दो तीन फ्रॉम तेजाब।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

तो दोस्तों, फिलहाल आप आनंद उठा रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक। 60s, 70s और 80s के कुछ अनमोल फिल्मी नगमे कुछ ही पलों में, यानी कि 1:40 पर आप सुन पाएंगे नए धुनों से सजी गीतों का सफर, हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स। लीजिए ये आखिरी गीत 1960s, 70s और 80s के।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं

और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: तो दोस्तों गीतों का सफर जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, यानी कि सुनते हैं विदी न्यूज तथा दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली द्वारा प्रसारित। हम फिर से लौट कर आएंगे ठीक 2 बजे हिट्स ऑफ 90s के साथ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat.

0: The attacks hit areas east of Kyiv in the early hours today. Regional Military Administration Chief Temur Kachenko said three people were also injured in the ballistic missile strikes. India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver in the event at the World Athletics Under-20 Championships. South Africa's Jan Hendrik Hemans won the gold with a throw of 80.5 meters. Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. Ashmita will face China's Qiu Han in the women's singles final tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says self-reliance in emerging sectors like semiconductors, space and drones will serve as a strong foundation for Viksit Bharat. Urges IIT students to keep national interests at the center of their decisions. Jharkhand government holds a second round of talks with student protesters over alleged irregularities in JPSC and GSSC examinations. Seven people killed and 11 injured in a private bus accident in Chamba district of Himachal Pradesh this morning. IMD issues orange alert for heavy to very heavy rainfall over Rajasthan and Odisha today. Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal suspended due to bad weather conditions. And in men's javelin throw, Ashish Yadav wins silver at World Athletics Under-20 Championships in United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के

0: तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
0: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर

0: बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
1: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को, क्रिप्को, एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है। और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है, जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष

होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतर की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हेलो एंड वेलकम बैक टू आकाशवाणी की अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। आप सुन रहे थे आकाशवाणी की दिल्ली द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज़। सुबह दोपहर समाचार और समाचारों के बाद अब वक्त हो गया है फिर से साथ चलने का एक और सुनहरे संगीतमय सफर में। दोस्तों, मैं हूँ आप सबके साथ आज के सफर में आरजे नूरी। और इस वक्त जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि वापस आएंगे तो लौट कर आएंगे हिट्स ऑफ 90s के साथ। जी हाँ, मैंने एक गुलदस्ता सजा लिया है, यानी कि हिट्स ऑफ 90s का एक खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता आप सबके लिए बेहद खास। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, आज का ये खास एपिसोड में खासतौर पर हमारी नई पीढ़ी यानी कि जेन जी और जेन अल्फा के युवाओं के नाम करना चाहूंगी, क्योंकि शायद आपने 90s को देखा नहीं, लेकिन यकीन मानिए वो दौर सिर्फ एक समय नहीं था, एक एहसास था। और आपके मम्मी पापा होंगे, आपके मामा मामी होंगे, आपके चाचा चाची होंगे जो 90s के जमाने के हैं, तो उनकी जिंदगी को गीतों के नजरे से कैसे देखा जाए, आज चलेंगे इस सफर पर यादों की गलियों में। आज की दुनिया बहुत तेज हो चुकी है और ये हम सभी जानते हैं। मोबाइल है, इंटरनेट है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है। लेकिन दोस्तों,

नाइन्टीज में चीजें इतनी आसान नहीं थी, फिर भी लोग ज्यादा मुस्कुराते थे, ज्यादा खुश रहते थे, मेंटल पीस रहता था, मेंटल हेल्थ जैसे जो फ्रेजेस है ना वो आज ही सुनने को मिलते हैं। नाइन्टीज में ये सब था ही नहीं, क्योंकि किसे परवाह थी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातों के लिए। बस जिंदगी को जैसे है खूबसूरती के साथ, अपने अपनों के साथ खेल खिलाते हुए, हंसते हुए, खुले मैदानों में खेलते हुए गुजारते थे। और चीजें आसान नहीं थी आज के जमाने की तरह, हर चीज हर क्लिक पर नहीं मिलता था, लेकिन लोग इतने ज्यादा खुश थे क्योंकि रिश्ते ज्यादा गहरे होते थे और दिलों में अलग ही सुकून होता था। आज अगर कोई दोस्त रिप्लाई देर से करे तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन 90s में घंटों दोस्तों के घर के बाहर आवाज लगाकर बुलाया जाता था। और आज मैसेज एक क्लिक पर आप तक पहुंच जाती है, लेकिन जमाना वो था जब किसी अपने के इंतजार में, यानी कि चिट्ठी के इंतजार में महीना इंतजार किया करते हैं, और वो इंतजार हमें बेचैन नहीं करता था बल्कि हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करता था। तो दोस्तों, उस जमाने के कुछ हसीन नगमों को आप तक पहुंचा रहे हैं हिट्स ऑफ 90s के माध्यम से। लीजिए ये पहला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हिट्स ऑफ 90s और जब हिट्स ऑफ 90s चल ही रहा है तो आज जरा सा ठहर कर तुलना करते हैं ना 90s और आज की दुनिया की। लेकिन ये तुलना ये तय करने के लिए नहीं कि कौन सा दौर बेहतर था, बल्कि यह समझने के लिए कि हमने क्या पाया और रास्ते में पीछे छोड़ क्या आए। 90s में अगर किसी दोस्त से बात करनी है तो या तो उसके घर जाना पड़ता था या लैंडलाइन पर फोन करना पड़ता था। आज की तरह नहीं कि हर किसी के हाथ में मोबाइल हो और फोन घर में एक ही हो तो पूरी फैमिली को पता चल जाता था कि किसका फोन आया है और किसको फोन किया जा रहा है। आज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल्स एक सेकेंड में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से जुड़ सकते हैं। यानी आज हमारे पास कनेक्शन की स्पीड है, लेकिन 90s में शायद कनेक्शन की डेप्थ ज्यादा महसूस होती थी। और जो भी उस जमाने के लोग हैं वो कहते हैं कि आज हम लोग इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो दिल का जो जुड़ाव है ना वो कहीं गायब सा है, कहीं हमने वो पीछे छोड़ दिया है। आज लोग साथ बैठे तो होते हैं लेकिन दिल से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि हम अपनी अपनी दुनिया में अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। लेकिन वो जमाना था जब घर में एक टीवी होता था और एक रेडियो होता था, जिसके इर्द गिर्द हम सारे बैठकर सुनते थे, प्रोग्राम सुनते थे, प्रोग्राम्स के एनालिसिस करते थे और ऐसा लगता था कि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है एक फैमिली में। लेकिन आज के जमाने में शायद ये कहीं खो गया है। 90s तब एक चिट्ठी का इंतजार होता था, आज एक टाइपिंग नोटिफिकेशन का। समय कितना बदल गया है ना। और जो आज के जमाने के लोग हैं उसको या उनको क्या पता कि इंतजार का वो मीठा एहसास क्या होता है। अगर आपको वो जमाना जीना है तो मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ चलिए ना गीतों के सफर में, हिट्स ऑफ 90s में सुनेंगे उस जमाने के वो मीठे एहसास गानों के माध्यम से।

दोस्तों मेरी बातचीत मेरे साथी से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आज गाने सुनते नहीं कंज्यूम किए जाते, यानी कि हमें कंज्यूमर समझा जाता है। लेकिन 90s में जब हम गाने सुनते थे तो हम लिसनर्स होते थे।

हम सुनते थे बड़े दिल से, बड़े चाव से, और ऐसा लगता है कि हर गीत हमारे लिए लिखा गया हो। दोस्तों, 90s के गीत की बात ही अलग थी। एक कैसेट खरीदना, उसके कवर को संभाल कर रखना, अपने फेवरेट सॉन्ग्स को चुनना और कभी कभी दोस्त से कैसेट लेकर उसकी कॉपी बनवाना, और अगर टेप उलझ गई तो पेंसिल लेकर बैठ जाइए और बस हो गया। ये भी एक कला हुआ करती थी, एक आर्ट हुआ करती थी। आज स्पॉटिफाई, यूट्यूब और दूसरी डिजिटल सर्विसेज ने संगीत को हमारी जेब में पहुंचा दिया है। आज हमें किसी गाने के लिए इंतजार करना ही नहीं पड़ता। लेकिन शायद 90s की खूबसूरती यही थी कि जिस गाने के लिए इंतजार किया जाता था उसे सुनना भी पूरे दिल से जाता था। और दोस्तों, 90s का हिंदी फिल्मी संगीत तो जैसे भावनाओं की पूरी डिक्शनरी था। मोहब्बत, दोस्ती, जुदाई, उम्मीद, सपने, परिवार, हर भावना के लिए एक गीत मौजूद था। तो यही कोशिश है कि उस जमाने को फिर से जिया जाए आज के इस फास्ट ट्रैक जमाने में गीतों के माध्यम से। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात गीतों के माध्यम से। और आज के इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आप सबके साथ, रेडियो साथी RJ नूरी। लीजिए सफर में सुनिए ये अगला गीत।

दोस्तों, हम जब तुलना करते हैं आज के जमाने की, और यानी कि आज के दौर की और 90s की, सवाल ये नहीं है कि 90s बेहतर था या आज का दौर। बस हमें बस दोनों दौर की अच्छी चीजें अपने पास रखनी है। 90s से रिश्तों की गर्माहट, इंतजार का आनंद, संगीत का जादू और परिवार का साथ, और आज से टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटीज, इंफॉर्मेशन और दुनिया से जुड़ने की ताकत। असली सवाल ये नहीं है कि 90s बेहतर था या आज का दौर। असली सवाल यह है कि आज की तेज दुनिया में हम 90s वाला सुकून कैसे बचा सकते हैं। शायद कभी कभी फोन को एक तरफ रखकर परिवार के साथ बैठना, किसी दोस्त से बिना किसी वजह से मिलना, पूरा गाना बिना स्किप किए सुनना, किसी की बात बीच बीच में नोटिफिकेशन चेक किए सुनना और बस एक पल के लिए जल्दी में ना होना, यही तो है पुराने दौर की खूबसूरती को नए दौर की सुविधाओं के साथ जीना। तो आज की यह महफिल हमें ये याद करेंगे उस दौर को जब कैसेट में आवाज बंद होती थी, टेलीविजन के सामने पूरा परिवार बैठता था, दोस्ती में सीन नहीं होता था और हिंदी फिल्मी गीत दिल की बात कहने का सबसे खूबसूरत जरिया हुआ करते थे। तो दोस्तों, लीजिए सुनिए ये आखिरी गीत कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। कुछ ही पलों में, यानी कि 2:58 होते ही आप न्यूज हेडलाइन सुन पाएंगे और 3 बजे का समय रहेगा मिशमी कमान कार्यक्रम और 3:05 पर ताई खमती श्रोताओं का कार्यक्रम और 3:30 पर हम फिर आपके साथ होंगे बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। लीजिए कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का ये आखिरी गीत।

आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं आकाशवाणी के रेड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस वक्त आप मेरे साथ यानी आरजे नूरी के साथ बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स।

तो श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी अपडेट्स यानी कि बॉलीवुड अपडेट्स आकाशवाणी करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, मनोरंजन की दुनिया में एक चीज बहुत सही है, वो है बदलाव, यानी कि चेंज नेवर चेंज। कभी शुक्रवार का इंतजार होता था कि नई फिल्म सिनेमा घरों में लगेगी, फिर आया सैटेलाइट टीवी का दौर, फिर और आज फिल्म रिलीज हुई कि नहीं कि उसका ट्रेलर, गाना, रील, मीम्स और ओटीटी रिलीज सब हमारे स्क्रीन पर मौजूद। तो आज की इस खास फिल्मी बातचीत में होगी नए बॉलीवुड रिलीज की, आने वाली फिल्मों की, ओटीटी के नए ठिकानों की और उन गानों की जो आज लोगों के प्लेलिस्ट में अपना जगह बना रहे हैं। दोस्तों, अगस्त का जो महीना है बॉलीवुड प्रेमियों के लिए काफी दिलचस्प रहने वाला है। 14 अगस्त के आसपास कई बड़ी फिल्मों की रिलीज को लेकर दर्शकों में उत्सुकता है। एक तरफ इमरान हाशमी की आवारापन तू, जिससे 2000s के रोमांटिक म्यूजिकल दौर की यादें फिर ताजा होने की उम्मीद है। यही सनी देओल की बंटवारा 1947 इतिहास और विभाजन की पृष्ठभूमि से जुड़ी कहानी लेकर आ रही है, और फिर भेड़िया तू यानी हॉरर और कॉमेडी का वो मजेदार कॉम्बिनेशन जिसने पहली फिल्म के बाद अपनी अलग ऑडियंस बना ली है।

और इन सबके बीच रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की लव एंड वॉर को लेकर भी दर्शकों में खासा उत्साह है। दोस्तों, सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में बड़े पर्दे पर मनोरंजन की कमी नहीं रहने वाली है। अब जरा गानों की दुनिया में चलते हैं। आजकल कोई गाना सिर्फ इसलिए हिट नहीं होती कि ये फिल्म में है। जब असली परीक्षा होती है, क्या वो गाना आपकी प्लेलिस्ट में आ गया है? क्या उस पर रील्स बन रही है? क्या उससे अपने स्टेटस में लगा रहे हैं लोग? यानी पहले गाना फिल्म को प्रमोट करता था, अब कई बार गाना ही फिल्म को प्रमोट कर देता है। अगस्त में डिजिटल चार्ट्स में अर्ज किया है जैसे ट्रैक्स लिसनर्स के बीच खास पकड़ बनाए हुए हैं, और जबकि तेरा मेरा रिश्ता को तेजी से ऊपर आने वाले ट्रैक्स में से गिना जा रहा है। और यही है आज के म्यूजिक लैंडस्केप की खूबसूरती, की एक तरफ नए बीट्स है तो दूसरी तरफ पुराने मेलोडीज का जादू अब भी कायम है, क्योंकि कुछ धुने नई होकर भी दिल को पुरानी यादों तक ले जाती है। तो दोस्तों, आज का शुक्रवार का मतलब सिर्फ फिल्म नहीं है, शुक्रवार का मतलब है आज ओटीटी पर क्या नया आया है। इस हफ्ते भी नेटफ्लिक्स, जियो, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कई नए टाइटल्स दर्शकों को देखने को मिलेंगे, और खास तौर पर इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा ने ओटीटी दर्शकों का का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और फिल्म 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। तो ऐसे ही खास खबरों के साथ मैं थी आरजे नूरी। चलिए एक और गीत सुनते हैं, और उसके बाद आपको बता दूं कि आप सुन पाएंगे वांछित श्रोताओं का समाचार, तो बने रहिए आकाशवाणी के रूप में 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: सर्कल खा अंके चुप खाउ ट्रैक एरिया मा आखपले लमकमा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ ओकोम इंडिपेंडेंट अल्फा आई खातोके मेहवाक अली आसाम राइफल्स बुबाम थोमा थोंगयान बुदानले हथाम खातोके रखले हया ऑपरेशन मा थोंगयान मचू चियाप चिसनले सेपाई बुए का कचाय का मा लाले दानले रखले सेपाई बुए लमकमा होमा यानसंग बन्नत फैतमले पिस्तौल चू खावली यौबांगले पासीघाट अर्बन टाउन होनुई मा हमपुंगबु हफाउ तो रिंगके आचा आंगले गवर्नमेंट हवान हानपकमा एसियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ए एविक्शन ड्राइव मोकले हले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लैन रिव्यू डिपार्टमेंट बोमा पुलिस ले आसामला ले लेंगे बुसबुतिबानी पासीघाट हत्तान नुई मा गवर्नमेंट हवान हफाउ तो डेट ले रिंगके बुपन ले अवत ले ऑफिशियल्स बुए टाउनशिप मा हले गवर्नमेंट हवान डेट ले हफाउ तो रिंगकबु बाकले पनले मावत स्वक्तान तो हले हबो मचुमक ओइले होले हबो मा पुपा चायका वन फिल्म रिंग के निंग के मखांग ए कल्चर टूरिज्म इंडस्ट्री पनले अमेरिक बो मा अरुणाचल प्रदेश बामचु नासिंग ले मनी मखांग ए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी मा ट्रैक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज ले नि बनागा अतुजाना हले मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई खा अंके राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस इनिशिएटिव लेके तेमा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ची मखंगे फोंगले वॉल बेंगे को खंगुंजान पाए आरजीयू खांके मास कम्युनिकेशन ची मखंगे सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन पाए असमला ले तुजाले हया टू सो तो आईपीआर मिनिस्टर न्यातो दुकम तेजू एमएलए डॉक्टर महेश चाय आरजीयू वाइस चांसलर प्रोफेसर सिब्राज नंपोंग एमएलए लाइसम सिमाई बोमा मामा चोंग बोंग थामले हकले अनि का हो इवाय इजा आकाशवाणी ईटानगर
1: बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, हिंदी फिल्मी गानों का सफर जारी रहेगा कुछ ही पलों में। आप सुनिए ईदू मिश में श्रोताओं का समाचार और उसके तुरंत बाद ही हम 4:05 पर लौट कर आएंगे हिंदी फिल्मी गानों के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर पुएला पुची हियो मानोलिनी एतानिची इदुमिश्मी आहोला केजी दरगालंबो NEET UG exam ke ba tahula ajopra ajoma national testing agency NTAR na ne retela asala imu anabramem a exam ma chi tahula ajopra exam ji mi ha ma ho hoya yo ba ega ba chi dala ne CBI me imu hola su char sit ashu la tega ba da a hoga ashu la tega ba ma physics ke ba manisa sanje havildar biology ke ba manisa gurunath mandare edonem केमिस्ट्री के बा पी बी कुलकर्णी खेप्रगा ला होगा ने इमे फीफा वर्ल्ड कप एजार कै आने तारहला प्रगे उखो व्हाट्सअप ग्रुप अमु आजिते ने आने ताहुल आजप्रा अमे गाजी सिबुदा लगा ताहुल आजप्रा हे टेलीग्राम मानबु आपी ओगाजी सिबुदा ने सी बी आई में ला होगा अरुणाचल प्रदेश अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ताक्सिंग सर्कल आतिका माचे ओलो ने पुकारला अतिका मा चाइनीज आर्मी में खे तगा लगा चिपो ऊंची गवर्नमेंट में इंडियन आर्मी दोने आतिका ची इमु गो चिचागने अंजिते मा चाइनीज आर्मी में अतिपा हिको को खिगा बचिंगा अतु सुगा उदा ने चीफ मिनिस्टर पेमा खंड में लगादा आहोगा अतिपा हि यहाँगा बगुम दा ने इंडियन आर्मी में लगा चाहे मांझी वसदा ने चीफ मिनिस्टर में लगा महो चाइनीज आर्मी में आतिपाही को क्वा गबू एगाधा ने ना वेलफेयर सोसाइटी दो ने आतिगाची किसा इमोल में लातगाची इंडिया मचे जू ना आचू प्रभा एगबा ने आज तिला प्रोग्राम तो है प्राने जोने पुगाउदा ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने एब ब्रिक्स आति मचे एजुकेशन मिनिस्टर आनबजे मीटिंग अखगा मा गिने मे दिल्ली मा खियाजिमु अबे एजुकेशन मिनिस्ट्री माचे आज आनबजे मीटिंग ची नगा महो लगादा आहोगा आसाम आरोतान दो माचे दालापा भूटान मा आनमी आयोग में आसाम आनो बुइ ना प्र माचे दगादा आहोगा आसाम आरो हे इचि बुइ पेया माचे नगा ने गोलाघाट शिवसागर दोने जोरहाट ला प्रगे होलोमा डिस्ट्रिक्ट माचे लाग गे दोने एचे बामागा हो मागा दोने माउंट बियो ने काप्रहु खिनि इमु एस एम आई तिहिम बागा महो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट आतिपुर माओ कापे ने तारहू कापी माचे एजाम ब्राहू एजाम इमो है मंगा हूँ मंगा कैम आकोमा आदगा बदा आहोगा गोलाघाट ने उदलगढ़ी डिस्ट्रिक्ट माचे इमु खेगता शाओबा लापरागे एचाहो निबा ब्रू मने आसाम माचे खिन्हू इमु शिगा बदा ने ऑफिसल आहोमा लगा महो आमु मेसी दोने अम्बेकारा लाप्रागे एचाहन लिबा एजरम्बा काप्रु इमु एचामाम आम्बे शिगाबा आइ दोने एजरम्बा हु दोने माहुम्बी वने काप्रु हु इमु हेक्टर हायमा दाबा बदा ला होगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी चे स्कैन शेयर सर्विस को माने एचाहन लिबा भारत डिजिटल मिशन माने आनी हो मंगा करो आलुमिंगी आलुमे ओपीडी तमको चिगाहे बदा ला होगा ने आ मिशन को माचे आबा कार्ड आज पमे इंडिया टिका ब्रमचे मिंगि तांदो आरोगादा लगा एचा सर्विस है असो ता स्टेट दोने यूनियन टेरिटरी आति माउंट बिओ ने मगर हु ता हो डिस्ट्रिक्ट माचे एजरन बानि हो कापी एचामा गवर्नमेंट तमको ए दोने एजर ता हो दोने माउ कापी ने यो के प्राइवेट तमको माने चिगादा ला होगा बुजाम्बत चिंपू तारीची गीतेमु वेस्टिन रिजॉर्ट आनंदोचे आछे अब एम मेंबर आदुंग माने इमु खेगेसी बमाहो सीआरपीएफ चपहि आलबो में इमु कानी आइदोने पब्लिक इमु में इमु खेगे फबगा बा मिंगा नंबर है इटानगर ची आरके मिशन तामकोमा गीतेगा बदा आहोगा सीगा अन्यहु इहुनु तामा बाजा लाएगा मैया है कमलेट डिस्ट्रिक्ट दोन आतिको छिशी एचाहो इटानगर चंद्र नगमा जीसीदा लगा मह नया बका ने है कोपवांग अरंगम ने अजय जरंग अमुदा लगा कोबाबा स्कूटर गेब नो केला ओगला दा ला होगा अल्फा आई आर्मी या मचे इमु कापी में आर्मी ता आने गे ने बुनी इंडिया म्यांमार आती पहिंदो चे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट वाका सर्कल चोप काउ आतिका माने असम रफोस गा रोहितोगा नमुदा आहोगा असम रफोस में आ आम्बापा अहमिया अलापुगा जी महो चौगा तिगने

0: ne rohito ga manen ihume pistul ka pidone iputa ta honu hate oga na muda la hoga isyang district ma che revenue department ne police department me aroga gane Pasighat town atika ma che government ne likhi eta gane jiga ando o sok lagala da la hoga ne ichibu sok o mo khaga ne abone ali sok we lagada ahoga ताजु लाके दोने नशा आजिमाने आतिकाची कल्चर येचु टूरिज्म करुची दे दोने आम आयोग आचु रोवदा लाने होलोमानी के बने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री को कोचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दोने वर्ल्ड बैंक को आरोग्य ने ट्रैक्शन एजर का अन्य हो तारो चैलेंज अखापगम बमा आईपीआर मिनिस्टर न्यातो दुकाम तेजु एमएलए डॉक्टर महेश चाय Rajiv Gandhi University Vice Chancellor Professor Sivaraj Nangpong MLA Laisan Simai Donne Ikisha Imu Ko Giga Bada La Ho Ga Etani Chi Idumismi Aho Alimao Ndobae Echa Akaswani Itanagar Dibrugarh Nali Idumismi Programma Echam Ta Ashe Arhonso Khiya Maho Etani Hendo Efe Pulu Chi
1: Dil tak baat pahunchi मिलते मिलते सनम ओ
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Hello?
1: Hey, hi. Did you find out?
0: I did. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये तुम क्यों करना चाह रहे हो? She's moved on. Big deal. I think you should as well.
1: Please. कब मिल रहे हैं?
0: आज रात, around 8.

तो श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही आकाशवाणी के ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज की आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं पे संपन्न होती है। उम्मीद है कि आज के प्रसारण में समाचार, उपयोगी जानकारियां, दिलचस्प बातें और मधुर गीतों का यह साथ आपको पसंद आया होगा। आप जहां भी हो, खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने अपनों के साथ जुड़े रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सफर के साथ और नई ऊर्जा और नए कार्यक्रम के साथ। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे साथ का सफर तो यही समाप्त होता है, लेकिन आपका सफर शुरू होगा आरजे डागमेन अनुज के साथ, तीसरी प्रसारण सभा के साथ, गुड इवनिंग ईटानगर के साथ। तो श्रोता दोस्तों, बने रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। मुझे यानी आरजे नूरी और मेरे साथी प्रसारण अधिकारी गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता नंद कुमार को बस दीजिए इजाजत। सुनते रहे आकाशवाणी के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल 103.1 मेगाहर्ट्ज अरुण एफएम से मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों इससे पहले आपके साथ बनी हुई थी हमारा यानी हमारी सबसे चहीते आरजे आरजे नोरा जिन्होंने आपके साथ समय बिताया हमारी दूसरी प्रसारण सभा में और अब शुरू हो चुका है हमारा तीसरा प्रसारण सभा यानी थर्ड ट्रांसमिशन और इस ट्रांसमिशन में आपका हम सफर रहेगा आपका ये दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता पी वी द्योरी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये तीसरा ट्रांसमिशन।

0: श्रोता दोस्तों, आप सुनेंगे इस तीसरी ट्रांसमिशन का पहला कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर,

हेलो एंड व्हाट्स अप ईटानगर 103.1 अरुण एफएम पर मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ननास एंड दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। जी हां दोस्तों, पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब चुका है, शाम की ठंडी हवा चल रही है और अगर आप अभी अपनी गाड़ी की विंडो से बाहर देखोगे तो आसमान बिल्कुल खूबसूरत नजर आएगा। सच बताऊं, हम दोस्तों अपनी लाइफ डेली लाइफ के छोटे छोटे टेंशंस में इतने बिजी रहते हैं कि क्या बताएं, ऑफिस का काम, ट्रैफिक, असाइनमेंट डेडलाइंस। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी शाम को रुककर आसमान की तरफ देखा है? जी हां दोस्तों, आज गुड इवनिंग ईटानगर पर हम बात करने वाले हैं द कॉस्मोस यानी इस अनंत ब्रह्मांड, हमारे स्टार्स और स्पेस के बारे में। क्योंकि जब जमीन पर टेंशन बढ़ जाए तो आसमान की तरफ देखना हमेशा एक अलग ही सुकून देता है। तो सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे कॉस्मिक बातें।

103.1 अरुण एफएम पर मैं हूँ आरजे ननास। और दोस्तों हम बात कर रहे थे कॉस्मोस की। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी गाड़ी ईटानगर की सड़कों पर नहीं सीधा स्पेस में ट्रेवल करेगी और स्पेस से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट है जो दिमाग हिला देगा। दोस्तों साइंस कहती है कि हमारे शरीर में जो आयरन, कैल्शियम और कार्बन है, ये सब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब कोई स्टार एक्सप्लोड हुआ था तब बने थे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है कि हम और आप, हम सब लिटरली स्टार डस्ट से बने हुए हैं। हम इस यूनिवर्स का ही एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों सोचो, जब आप गंदा मार्केट में मोमोस खा रहे हो या बैंक किनारी के ट्रैफिक में रुके हो, आप वही एटम्स कैरी कर रहे हो जो कभी किसी गैलेक्सी में चमक रहे थे। क्यों? हाई लेवल फिलोसॉफिकल फीलिंग आई ना। चलो दोस्तों, इसी मैजिकल फीलिंग के साथ सुनते हैं एक और बेहतरीन बॉलीवुड ट्रैक और हम बातें करते रहेंगे और इस ट्रैक के बाद। तो बने रहिए, सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल, जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5 लाख रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।
1: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों पता है मुझे कॉस्मोस के बारे में सोचना क्यों पसंद है? क्योंकि ये हमें हमारी औकात याद दिला देता है। गाइस, इन अ पॉजिटिव वे। दोस्तों दुनिया में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उन सब के बीच हमारा एक छोटा सा प्यारा सा प्लेनेट अर्थ। जब आप इस स्केल पर सोचते हो ना, तो आपका वो छोटा सा डेली स्ट्रेस कि बॉस ने क्या बोला, ये ट्रैफिक क्यों है, एकदम छोटा लगने लगता है। तो दोस्तों आज शाम मेरा सवाल आप सबसे ये है, अगर आपको स्पेस ट्रैवल करने का चांस मिले तो आप स्पेस में कौन सा हिंदी गाना सुनना चाहोगे?

और दोस्तों शाम हो चुकी है, जब आप घर पहुंचो तो थोड़ी देर के लिए बालकनी से खड़े होकर आसमान को जरूर देखना। स्टार्स को देखना हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी है। दोस्तों मैं अभी के लिए चलता हूं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि

0: श्रोता दोस्तों, आप सुनेंगे हिंदी समाचार, उसके बाद इंग्लिश न्यूज और उसके तुरंत बाद नुक्ते श्रोताओं का समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग सेक्टर में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार, भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर करेगी इसकी पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों के सामने अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। शुक्रवार शाम ईटानगर के चिंपू स्थित वेस्टर्न रिसोर्ट के पास न्यू डंपिंग जोन में सड़क किनारे का स्लैब अचानक ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत और दो अन्य घायल। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई के चार सक्रिय सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले के वक्का सर्कल में भारत म्यांमार सीमा के पास असम राइफल के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक, पर्यटन, उद्योगों और विशिष्ट पहचान को डिजिटल स्टोरी टेलिंग और फिल्म निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय ट्रैक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख में शुरू हुआ। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि को अधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि अपर सुबनसिरी जिले के ताक्सिंग सेक्टर में कथित चीनी घुसपैठ की खबरों पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार, भारतीय सेना और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसकी पुष्टि करेगी। श्री खांडू ने कहा है कि उन्होंने नाहा वेलफेयर सोसायटी को पहले ही आमंत्रित किया है और वे स्वयं भी मामले की पुष्टि करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि तथ्यात्मक पुष्टि के बिना ऐसी खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्र जिम्मेदारी निभाती है।
2: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में नए क्षेत्रों में विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा है कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता की यह पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
2: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
1: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
2: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपेरिजन का। लेकिन याद रखिये, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
1: शुक्रवार।

0: अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर चिंपू स्थित वेस्टर्न रिसोर्ट के पास न्यू डंपिंग जोन में सड़क किनारे का स्लैब अचानक ढह जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए। पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों ने दो लोगों को बचाया है, जबकि एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने मलबे से बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए आरके मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान 27 वर्षीय तामाबाजा के रूप में हुई है, जो कामले जिले के रागा स्थित दौन गांव का निवासी और वर्तमान में चंद्रनगर में ईटानगर में रह रहा था। मलबे से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। घायलों की पहचान कपवांग अरांगहाम और अजय जेरांग के रूप में हुई है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई के चार सक्रिय उग्रवादियों ने लोंगडिंग जिले के वाका सर्कल में भारत म्यांमार सीमा के पास चुपखाओ ट्रैक क्षेत्र में असम राइफल के समक्ष आत्मसमर्पण किया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा लगातार समझाइश और संवाद के प्रयासों से उग्रवादियों को हिंसा छोड़कर राष्ट्र मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया गया, जो बिना किसी गोलीबारी या हताहत के पूरा हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पास से 4 पिस्तौल और 17 लाइफ कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, उद्योग और विशिष्ट पहचान को डिजिटल स्टोरी टेलिंग और फिल्म निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15 दिवसीय अट्रैक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज राजीव गांधी विश्वविद्यालय दोईमुख में शुरू हुआ। यह कार्यक्रम केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस पहल के तहत उद्योग विभाग के सहयोग से और विश्व बैंक के वित्त पोषण से आयोजित की जा रही है। साथ ही यह आयोजन आरजीयू के जनसंचार विभाग के सेंटर ऑफ कल्चरल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य के आईपीआर मंत्री न्यातदुकाम, तेजू विधायक डॉ. मोहेश चाय, आरजीयू के कुलपति प्रोफेसर शिवराज, नामपोंग विधायक लाइसेंस सिमाई सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ईस्ट सियांग जिला प्रशासन ने पासीघाट शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि को अधिकृत कब्जे से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। जिला प्रशासन, भूमि राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से पासीघाट मुख्य बाजार में अभियान चलाते हुए सरकारी भूमि पर बनाए गए कई ढांचों को हटाया। अधिकारियों ने बताया कि टाउनशिप में सभी सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के तहत अभियान जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग और घायल हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेमेंस ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज सेमीफाइनल में अहमद वतन रक्षिता रामराज को हराया था। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय साशी या सहायक निकाय है, जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र की शक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर एक बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
2: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से

0: संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Pare Hydro Power Station is currently in operation. Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also, avoid entering the river bed to collect sand, stones, or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings, or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay, or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
1: Attention! Pare Hydro Power Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करें और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करें। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करें। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करें और ना ही उसमें धोने जाएं। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करें। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करें। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

तो दोस्तों ये था कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज का, 103.1 मेगाहर्ट्ज पे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। और अब दोस्तों आप सुनेंगे शाम की महफिल, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.5
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन।

और इसी के साथ श्रोता दोस्तों समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम शाम की महफिल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फिर से शुरू होगा हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का सिलसिला। तो बने रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात।

हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। क्या आपके पास अपने जिले की कोई ऐसी अनोखी कहानी है जो पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए? क्या आप अपनी संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं और स्थानीय पहचान को पूरे देश तक पहुंचाना चाहते हैं? तो आपके लिए ही है जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक विशेष राष्ट्रीय पहल जो देश भर के उभरते डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। चुनौती में आपको अपने जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, परंपराओं, स्थानीय कहानियों और अनोखी पहचान पर आधारित 1 से 3 मिनट तक का वीडियो तैयार करना है और वेब्स ओटीटी ऐप माय वेब्स सेक्शन के माध्यम से अपलोड करना है। वीडियो जमा करने की अवधि है 1 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक। पुरस्कार भी है बेहद ही आकर्षक। जिला स्तर पर प्रत्येक विजेता को 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए और राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पर 5,00,000 रूपए तक के पुरस्कार हैं। तो देरी किस बात की, आइए अपने जिले की पहचान को दीजिए राष्ट्रीय मंच और अपनी कहानी को पहुंचाइए पूरे भारत तक। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर जिले की अपनी कहानी, हर रचनाकार की अपनी आवाज। अधिक जानकारी के लिए वेब्स ओटीटी ऐप के माय वेब सेक्शन पर जाएं और आज ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपकी कहानी, आपकी पहचान, अब पूरे भारत के नाम।

0: और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार।
1: सी आकाशवाणी ईटानगर तनक दिंगम आसेरूप कुमृक्षी दौला सियुम का आदि पवम इरब तुम करफ आदि लुतादम तत्वाय लुभिना से तबुक ताली नीट यूजी 2026 पेपर लीक रेगोलो परिक्यांग बिपेनाम क्वेश्चन पेपर कसुकना आमी एम अयिंग कोलांग आउम कोपे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ए इंक तक एम इबम दौला कोर्ट लॉक के एसएम इगा बतोपे बिलिक तुम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लोग इगबोनाम परीक्षा विपनाम लोग क्वेश्चन पेपर सेम डॉक्यूमेंट ना आमी के दिन से आगे के अलग लोग अनलाइन बम डॉलर डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म आयन लोग को सुप्तुं पेपर लीग रेगोसो अदाया पे मिंगे इगबोना के दिन मिडुम आउम को का खेपलें तुं फिजिक्स सब्जेक्ट लोग के मनीष संजय हवलदार में का खेपतुं केमिस्ट्री सब्जेक्ट लोग के पीबी कुलकर्णी में का खेपतुं देलो बायोलॉजी के मनीष गुरुनाथ मंदहारे बुलुम का खेपतुं पेपर तोप्यो ना आमी के दिन सी फीफा वर्ल्ड कप 2026 एमला व्हाट्सएप ग्रुप को

सुधर दोस्तों, आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पे। और इसी ऐसे कार्यक्रमों को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 KHz तथा DRM 666 KHz पर। और श्रोता दोस्तों, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के कलाकार।

वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय लवली लिसनर्स. आप सुन रहे हैं 103.1 अरुण एफएम पर. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और स्वागत करता हूं आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में. दोस्तों, गाने सुनते सभी हैं, पर दिल से फील कौन करता है? वही जो संगीत की हर एक बीट को अपनी रूह में उतार लेता है. और जब बात आती है एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही लगता है कि मानो कानों में मिश्री घुल गई हो, तो बस एक ही नाम जहन में आता है. जी हाँ दोस्तों, आज की इस खास सेगमेंट आज के कलाकार में हम बात करेंगे एक ऐसी दीवा की जिनकी आवाज बिना किसी उम्र या जानरा की सीमा के हर दिल के राज करती है. तो दोस्तों, चाय की प्याली उतार लो और हेडफोन्स डाल लो, एंड लेट्स टेक अ मैजिकल म्यूजिकल राइड टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स.

दोस्तों कहानी शुरू होती है साल 1998 में वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर ब्रह्मपुर में पैदा हुई एक छोटी सी बच्ची। छोटी से ही उसको संगीत से बेहद प्यार था। उसकी मम्मी की जो खुद एक अच्छी सिंगर थी, उसने ही बच्ची की पहली गुरु बनकर इसको संगीत के सरगम सिखाए। सिर्फ 4 साल की उम्र थी जब इसने हारमोनियम पर अपनी उंगलियां चलाने शुरू की और पहला गाना गाया। और फिर आई वो रात साल 2000 की, जब इस 16 ईयर्स की एक लड़की ने टेलीविजन पर आने वाले फेमस सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा में कदम रखा। तभी किसको नहीं पता था कि ये वही स्टेज है जो देश को आने वाला कल की सबसे बड़ी प्लेबैक लेजेंड देने वाला है। वो शो इसने जीता और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी हिस्ट्री जिसके बाद आज हम सब इसे श्रेया घोषाल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं उसकी बेहतरीन आवाज में उनका पहला डेब्यू सॉन्ग जादू है नशा। ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज। और दोस्तों अब सुनिए इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस शो को देख रहे थे एक बहुत बड़े फिल्म मेकर, उनका नाम था संजय लीला बंसाली। उन्हें अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो बिल्कुल मासूम हो, प्योर हो और जिसमें एक क्लासिक चार्म हो। बिना किसी इंडस्ट्री बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के उस 16 साल की लड़की को कॉल आया मुंबई से। और दोस्तों पता है वो फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी देवदास। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए, अपने करियर की पहली ही मेनस्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म में आपको लेजेंड लता मंगेशकर और कविता कृष्णमूर्ति के साथ गाने का मौका मिले और आपका म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार हो। जी हाँ दोस्तों, श्रेया ने देवदास में बायरी पिया, दोला रे दोला और सिलसिला ये चाहत का जैसे गाने गाए, और जब फिल्म रिलीज हुई तो पूरा देश सुनता रह गया। उस एक एल्बम ने श्रेया घोषाल को रातों रात नेशनल फिल्म अवार्ड दिला दिया, और यहां तक ही नहीं, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उनके नाम हो गया। बचपन का सपना सच हो चुका था। पर दोस्तों श्रेया घोषाल की जर्नी सिर्फ एक हिट फिल्म तक सीमित नहीं थी, ये तो बस एक ट्रेलर था। अगले दो डेकेड्स में श्रेया ने अपनी आप को इस जनरेशन की सबसे वर्सेटाइल सिंगर साबित किया।

दोस्तों उनकी आवाज की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? प्रोनाउंसिएशन। चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयालम, श्रेया घोषाल जब बोलती है और गाती है तो लगता है कि उन्होंने उस भाषा में ही जन्म लिया। आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत उन्हीं की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म आई हेट लव स्टोरी। काफी ब्यूटीफुल सॉन्ग है दोस्तों, लीजिए आप सबके लिए पैसे ये बेहतरीन गीत ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दोस्तों, श्रेया घोषाल की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा सबके सामने है। 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स और तो और यूनाइटेड स्टेट के ओहायो स्टेट में गवर्नर ने उनके ऑनर में 26 जून को श्रेया घोषाल डे डिक्लेयर कर दिया है। कैन यू बिलीव दैट? देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम का दड़का बजता है। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी अगर आप कभी उनको इंटरव्यू में सुने तो वो आज भी उतनी ही ग्राउंडेड, हम्बल और संगीत के प्रति समर्पित लगती है जितनी आपने पहले दिन थी। ये चीज उन्हें सिर्फ एक बड़ा आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ट्रू आइकॉन बनाती है, एंड आई लव हर। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे आज के कलाकार की, एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी मेहनत और अपनी सुरीली आवाज के दम पर ये साबित कर दिया कि अगर सपने पूरे करने का जुनून सच्चा हो तो किस्मत को भी बदलना पड़ता है। आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आखिर में सुनते हैं एक और बेहतरीन नगमा उन्हीं की आवाज में फ्रॉम द फिल्म सिंगम। लीजिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मैं नोट कराता हूँ, सुनते रहिए अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: सुधा दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज के कलाकार और समाप्त होता है हमारा ये कार्यक्रम। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। और अब दोस्तों, अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे निशी श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर पोकुमा सोपोल गा अलो लुए पिपे ने नन पुआ अरुण का कन बाज रेम तान में लिम अलमेन सुरुंग निशी आउम आर मुलें जी ग्रेम तान गे द ताच्यो बस सुरुंग निशी पुएं तापा चोरे जब जरन शी नर्म आखोम हर्रे पुपापला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गुदे ग अलबे चेन पानी गुदे ने तुलु कुनाम गुदे ह क्वेश्चन पेपर गुदे हम अलग लोक लिग्री के ला डिजिटल नाम ते लो जिगो जिला क्वेश्चन पेपर हम चेंचो बुचो मोद कुब रिगो पाग कुना निदुम उरुगोला ओम गुदे ग आगो लो सीबीआई गुदे ह केले दा चार्जशीट हम जिलक पुनम हम मेन पार दो और नीट यूजी 2026 पेपर हम बेसिक्स लो मनीषा संजय हवलदार ला बायोलॉजी लो मनीषा गुरु नाथ मंदारे और केमिस्ट्री लो पीवी कुलकर्णी बोलो चेंचो बुचो मुकुमह में पाता तो और अगम आहम तकाब का रेप नमस्सो व्हाट्सएप ग्रुप गो पीपा वर्ल्ड कप 2026 इमिन ब मोलेंग क्वेश्चन पेपर गद हम एग्जाम जीतने ने गद ने जिगो जिप कुमा और कसो

0: question paper hem telegram lokachin jigo jita pukrum hem na mem pata do apar sunsri district taxing da lo chinese gud ha da kor kurlik to hem na puishala agom hem tapa kunam agom sim nyuga sarkar ha indian army gud ne takabka misri kna hem la morga nya al khornachal pradesh state ke chief minister na pema khanto ya japa jip kum hem mem pato ok na welfare society ni gud ne ny ya tom pukuma ok sok chinese gam dakor kurli kokluk lo agum aham tate kene alba taka mesrik ne kham dram kandu ya japata kuma okso ke chinese ge anam nam agum aham tege alba tajang tala mete ge incho lo so ko puishala agum jago kunam girishim taji kaji deba rima tukne kham chief minister ya japata kuma kham to भारत के एजुकेशन इकोसिस्टम सिम अलिया मधुकूब प्रोग्राम हम अलब मुझे यया दुकूब सरकार है उल इसी आवम हम जबकि जिप कुम हम ला रही बोल के एजुकेशन मिनिस्टर धर्म प्रहलाद जोशी या जापा जिप कुम ओक लिगरी वाला लिखुमना ने ब्रिस एजुकेशन मिनिस्टर गुद का कबा हम दोबाम तेर कुला मुरुम नितने तेली लो एजुकेशन मिनिस्ट्री का उब उब न ऑफिशियल शिक्षक का कबा हम Uyghur lawa dogdag dukla sok agum aham education minister ya japa jikne bham la mempa to nulsin chi puishima kazwani etanu pokum lok tal to nya to nagaland ne gida erdir mi se kok asam ge golagat district ne bhutan mok lok sebe us telen la morga nya alho mego sirik shek alba nyigut ne sil gela doma dama ga tukur ba khala mem pa to ok chem ni wala f gonta ga ara lo golaga te la udal gori ga ta te lo ni dum e ni go sibe is ha be ke be ma ji ka na ma iste to lo ku dum la acham kona go la pin go ba sibe is ha ni ha be ke be ma ji ba kham la mem pa ta to ok uri go la ang district te lo sibe is बेलिक जिकन में सो लाख अखें चांगो बला अंग हजार चिमरे पीन चेप बला कोना निग ने सेविक इस है सेविक से के अलवा सेम गे में गक दुकन में हम ला पुशा ला है जपा जिप कुमे और के गोलागा डिस्ट्रिक्ट लो सेविक इस है के यूचुंब बेलिक जिक ला सिर्फ सागर और के जुरहाते लो चिंग के अलवा बेलिक जिता गक दुकन में हम ला पुई है में पाता तो और के chimri ep chang gola f nampom gdne dokta ke kama dokuba moje pukuna maso chang gola ang kemp goba ni gdne docho takcho modkoba mutu jinam lo hajar er duria goba ni gdne doma dangme ke dukunda maso tayo lo gari gora namte khamla koro sig ok muso nam kh me wasbe is he bije jitap kunam khal me pa tha to ok sok tayo lo hajar er chimri कन चेप गोला पिन हेक्टर से नोंगो गुद खम सिबिक दिस बिलुप जिग्रे कला चेप गोला कन हजार गोब अ उमर आस गुद खम सिबिक दिस बिक बि मार्ज पा पुकडा म ओ कसोक नि गुद ने दोदि दोक दोक मुज कुनाम गुद ने अथॉरिटी ह अलवे हेदर कादर जिब ग दुकुना ख मे पा ता तो चिमपु ग वस्टाइन रिसोर्ट दोक एल बाला लो नितव कोद बाप कोक लो मुरुम दोमेन तने होमे ओम गो होपाक लो लो कुम निदुम आकने मुहे खोमार ला सिमग ग्रिक ला निदुम एनीवन हम उन टारगेट को मोप कुम हम मेन पा दो ओक सोक निदुम एनी गोने हम पुलिस ला सीआरपीएफ गद ख सेलेंजि ग्रिक ला निदुम आक नम पब्लिक नि गद ख सेलेंजि कुम ओक सोक उन तार गद ब मनम निदुम एनी गद ने आरके मिशन हॉस्पिटल लो बागलग ला नने पोने हम ने बा पापा जिला रिग दुख नम ओक कामले डिस्ट्रिक्ट रागा ग दोर नम पोम लोक एनी चेम नि गोला नि ग कन खुन तमा बाजा ने होल कोक लो हुई खोमार ला शिप कुम ओक सो बी ये सिजागे दिनोलो इटानगर ग चंदनगर लो दुखने में हमला में पातो और कोद लोक यक्तें तानम स्कूटी हम चिन जोलें जितापु कुने में और सो क उन तार गने ह कफ़ंग अरंगम ला अजे जेरंग बनी हमला में पाता तो क सुरंगन शिपुये है वो
1: 시 아카스바니 단어 보고 봐.
2: सोचा दोस्तों आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात और अब दोस्तों आप सुनेंगे कार्यक्रम माय स्टेट माय प्राइड
3: नमस्कार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज मैं हूं आपके रेडियो साथी गैरत दोस्तों हर इंसान को अपने घर गांव, प्रदेश या देश पर नाज होता है वे उनसे इमोशनली अटैच्ड होता है और इस अटैचमेंट के लिए कोई वजह की जरूरत भी नहीं होती बस इतना काफी है कि वह आपका गांव है आपका प्रदेश है लेकिन जब वही गांव या प्रदेश या देश कुछ बहुत अच्छा कर जाए कुछ बड़ा अचीव कर ले तो ये अटैचमेंट गर्व या प्राइड के रूप ले लेता है तब ये फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जी हाँ दोस्तों सूरज की पहली किरण जिस सरजमी को अपनी रोशनी से जगाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश ये हमारा प्रदेश भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा ऐसी कई चीजों में ऐसी जगहों में अपना नाम विश्व इतिहास में दर्ज किया है जो हर अरुणाचली को सर उठा के सीना ठान के चलने का हकदार बनाता है जिसके लिए हम अपने प्रदेश पर सदैव गर्व होते हैं ऐसा ही एक खेल और खिलाड़ी के बारे में आज हम बात करेंगे जिन्होंने अरुणाचल के नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर लाकर हमें गौरवान्वित किया है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने प्रदेश के इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मिस हिलांग याजिक हिलांग याजिक ने बॉडी बिल्डिंग के मॉडल फिजिक कैटेगरी में 2025 को भूटान में आयोजित 15 साउथ एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का झंडा ऊंचा लहराया है और अरुणाचल का नाम और भी ऊंचा वैसे बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स उतना हमारे यहाँ चर्चा में नहीं है कई लोग इस बारे में जानते भी नहीं है ऐसे में हिलांग याजिक ने कैसे और क्यों इस स्पोर्ट्स को चुना आइए उन्हीं से सुनते हैं
4: सो फर्स्ट ऐसे कुछ प्लान नहीं था बट जैसे हम एक डांसर भी है सो हम जुम्बा क्लासेस वगैरह कराता था सो जो जिम में हम जुम्बा क्लासेस कराता तब हम क्लास 10 था आई थिंक 10 और 11 में भी तो उस समय में जिम का ऑनर तो भैया ने बोला कि स्टेट में पार्टिसिपेट मतलब करके देखो कॉम्पिटिशन वगैरह होता है हल्के सो सेकेंड टाइम था वो स्टेट लेवल मेरे लिए तो पार्टिसिपेट किया फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट टाइम में हमको सेकेंड मिला सो वो
3: स्टेट में
4: सेकंड मिला तो बहुत समय तक पता नहीं था कि इससे आगे भी जाना है बोल के एंड हम लोगों एक्चुअली बोल से वुमेन कैटेगरी में बोल से इतना पॉपुलर तो नहीं था मेन लोग का तो होता था बहुत कॉम्पिटिशन होते रहता था तो धीरे धीरे हम किया है फोर्थ टाइम्स हम विनर रह चुका है अभी स्टेट में हाँ तो कंटिन्यू स्टेट को तो कंटिन्यू किया है बट बाहर एक दो बार खेला था बट उसमें भी इतना एक्सपोजर नहीं मिला और इतना आइडिया उसमें भी इतना आइडिया नॉलेज नहीं मिला हमको बट 2021 आई थिंक उसमें हम फर्स्ट टाइम सिक्किम में नेशनल्स खेला था फेडरेशन कप बहुत प्रेस्टिजियस स्टेज है वो फेडरेशन कप तो उसमें पार्टिसिपेट किया तो उसमें पार्टिसिपेट करके ही हमको पता चला है कि कितना लेवल हाई है बाहर कंपटीशन पर उस समय हम लोग स्टेट में तो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता था वो तो इसलिए हम भी शायद से इतना आगे नहीं किया होगा बट नेशनल लेवल में जाके हम देखा है तो वहां में कुछ अलग ही है वो लोग के लिए क्रेज जो अलग है
3: स्पोर्ट्स को लेके हाँ
4: एंड वो लोग हम लोग का जो कैटेगरी है मॉडल फिजिक है तो उसमें ऐसे भी नहीं है कि वो लोग इतना बल्कि ह्यूज है ऐसे भी नहीं है वो लोग को देख के हमको मजा आ रहा है आई मीन इतना अच्छा बदन और वो लोग इतना ये चीज को लेकर इतना प्राउड भी है तो हम उसको देख के फील हुआ है कि कुछ कर सकते हैं यहाँ
3: कोई एम या टारगेट नहीं था बस किसी के कहने पे स्टेज पे उतरी अच्छा लगा फिर आगे बढ़ती गई और दोस्तों ये आगे बढ़ना गाड़ी में बैठ के जाना तो है नहीं इसके लिए हाथ पाव तोड़ने पड़ते हैं
4: तो हम लोग फर्स्ट फेज वो होता है कि हम लोग एक क्वालिटी गेन करना पड़ता है मसल गेन कर ले कुछ वेट तक हम लोग गेन कर लेगा उसके बाद ड्रॉप करना पड़ता है तो ड्रॉप वाला सेशन जो सबसे तकलीफ होता है हम लोग के लिए दो तीन महीना तो हम लोग एक्सट्रीम डाइट में चला जाते हैं बट वो दो तीन महीना के लिए हम लोग एक साल से प्रिपेयर करना पड़ता है मतलब हेल्दी खा के आप ऐसे नहीं कि पूरा साल में मर्जी खा लिया और दो तीन महीना में आप स्ट्रिक्टली बैठ गया ऐसे नहीं होते क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाते हैं जितना हम लोग खाया है जंक फूड खाया है जो भी खाया है वो पूरा वो उस समय में असर नहीं करेगा बट बाद में वो पूरा जमा होकर रह जाता है उसके बाद हम लोग को ड्रॉप करने में बहुत तकलीफ हो जाता है नॉर्मली जब वेट ड्रॉप करते हैं बॉडी बिल्डर लोग इतना कार्डियो नहीं करते कि मसल लॉस हो जाता है क्वालिटी मसल

0: रहता है, तो फिर अपना खाना भी खुद बनाना है। तो वो
1: हाँ
0: प्रोसेस जो हम यूनिवर्सिटी जाने से भी, हम सुबह क्लासेस वगैरह करा के हम टिफिन लेके जाता था और हम बस से जाता था, क्योंकि हमको ज्यादा सोने नहीं मिलता तो हम बस से सो के जाता था। तो ऐसा होता था, ट्रेनिंग उस समय यूनिवर्सिटी समय बहुत टफ था। उसके बाद हम सोचे कि यूनिवर्सिटी खत्म होकर थोड़ा आसान हो जाएगा, यूनिवर्सिटी खत्म हो, एक साल के पैर है, फिर भी काम जितना आप सोचते हैं अभी आराम है, आराम नहीं होता है वो।
1: आपका भी अपना एक कोच अलग से रहता होगा।
0: हाँ, मेरा भी कोच है, मेरा कोच ओडिशा का है। तो अभी जब सब इंटरनेशनल और फर्स्ट नेशनल जब मेडल जीता है, तब से 2024 से अभी तक वही कोच है।
1: तो वो यही है।
0: नहीं, ओडिशा में हम लोग ऑनलाइन करते हैं, आई मीन वो ऐसा ऑनलाइन वीडियो वाला नहीं, बट वो हमको डाइट चार्ट वगैरह, उसके बाद वर्कआउट्स वगैरह कर देते हैं। यहाँ का जितना इंटेंसिटी में करना है वो हम डिसाइड करते हैं कितना करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अभी इतना हम ट्रेनिंग कर लिया, हम भी कोच है और हम इतना ट्रेनिंग कर लिया कि हमको अपना बॉडी को पता हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन में है वो कोच को पता नहीं चल रहा होता है ना, वो तो वहां से भेज देता है तो हमको
1: हाँ
0: वीडियो में तो नहीं देख रहे प्रॉपर,
1: हाँ
0: लेकिन हम भी अपना बॉडी को इसलिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो हम अपना हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कार्डियो हम ज्यादा करते हैं क्योंकि मेरा ड्रॉप वेट ड्रॉप होना बहुत मुश्किल है।
1: कोई भी काम में एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग या प्रैक्टिस अनिवार्य होता है, जिसके बिना कुछ भी अचीव करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन टॉप तक पहुंचने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटली स्ट्रोंग रहना भी बहुत जरूरी है, और रास्ते में आए पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शंस को भी संभालना उतना ही जरूरी है।
0: सबसे पहले तो विल है, विल और डिसिप्लिन तो नॉन नेगोशिएबल है, वो डायरेक्ट होना ही पड़ेगा। एंड बॉडी बिल्डिंग ऐसा वाला स्पोर्ट्स है कि आपको सबसे पहले अपने आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये सोच के जाना पड़ेगा कि सोसाइटी आपको कुछ भी बोल सकते हैं, सोसाइटी भी बोल के नहीं है, बट ऑनलाइन ट्रोलिंग तो अलग लेवल है। और ऐसे कि आप ऑनलाइन, आप सोशल मीडिया में नहीं रह के भी कर सकते। बॉडी बिल्डिंग ऐसा लाइक क्या फर्स्ट टाइम में जाएगा जीतेगा, ऐसे हो भी सकता है, बट नहीं होने का चांसेस ज्यादा है। तो वो आपको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ट्रेनिंग ट्रेनिंग और ऐसे कि ये ना बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन है, जैसे हम आगे भी आपको बोले ना, बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन है। आप आदमी ना बहुत होता है, 1-2 महीना में भी आके बॉडी बन जाएगा सोचने वाला भी होता है ना, तो वो माइंडसेट को चेंज करना है। आप सोच के जाना है कि ये बहुत लंबा गेम है, आप अभी से शुरू करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, फ्यूचर में इसका मिलेगा ना, अवार्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे सोच के जाना पड़ेगा।
1: एक कहानी है जिससे एक कहावत भी है, अंगूर खट्टा है। खुद अपना बेस्ट नहीं देके कई बार हम हालात को ब्लेम करते हैं। कोई अगर आपकी मदद भी करना चाहे तो उसे पता तो चले कि आप में कोई खास बात, मदद करने लायक कुछ है भी या नहीं, आप में स्ट्रोंग डिटर्मिनेशन है भी या नहीं। इसीलिए अपने आप को तराशने का काम करो, मेहनत इतना करो कि कोई भी आपके हुनर को पंख देने के लिए आगे आ जाए।
0: बॉडी बिल्डिंग अगर आप पर्टिकुलरली सेलेक्ट करेगा, मतलब बहुत विलिंग विल होना पड़ेगा, डिसिप्लिन आप सोच लेना पड़ेगा कि टफ है रास्ता ना, बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें। और हम मेरा जैसे वाला को हम ऐसा बोलना चाहिए, मेरा जैसे इन द सेंस कि जिसका फाइनेंशियल जो पेरेंट्स स्टेबल नहीं है, हम बहुत मेहनत करके यहाँ पहुंचे। और हम हमेशा, हम अपना लास्ट एक स्पीच था उसमें भी हम बोला था कि ऐसा बहुत सारा होता है जो जिसका पेरेंट्स प्रिविलेज है, वो लोग को चाहे कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में ना, नहीं करने से भी वो लोग के लिए है पेरेंट्स पीछे कुछ कर देने के लिए। लेकिन हम लोग का जैसा वाला लोग जो ज्यादातर ऐसे होते कि थोड़ा थोड़ा विक्टिम प्ले करने के लिए करते हैं, ऐसा होता है, हम भी किया ऐसे तो नहीं, हम भी नहीं किया, हम मेरा पेरेंट्स ऐसा उनसे दिखता वैसा उनसे दिखता, ऐसे हम भी बहुत सोचे। बट हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि हम लोग के लिए मुश्किल है रास्ता जो ना, रास्ता मुश्किल है, पर हम जैसे बोले कि अच्छा इंसान भी है, अगर आपका पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर सकते है ना, यहाँ अच्छा इंसान भी है और आपको भी अच्छा होना पड़ेगा। जो फर्स्ट पुश होता है ना, वो हमेशा आपको कोई ना कोई कर ही देगा आपको पोटेंशियल को देख के, लेकिन आप में पोटेंशियल होना पड़ेगा, आप में डिसिप्लिन दूसरा को दिखना पड़ेगा। और ऐसे भी नहीं है कि आप पोटेंशियल है, डिसिप्लिन है, आप चुपचाप बैठ रहे और वो आपको खुद आके हेल्प करेगा, ऐसे भी नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा वॉइस आउट होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमको हेल्प चाहिए बोल के ना, हमको ये स्टेज में हम चाहते हैं कि हमको लगता है कि हम कर सकेगा, तब आपको जाके हेल्प मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे ही होके हुआ है। और
1: दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, तो आइए सुनते हैं हमारे राज्य के इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मिस हिलांग याजी आज के यंग जनरेशन्स को और समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं।
0: तो हमको लगता है कि यहाँ का स्पेशली लड़की लोगों को, लड़का लोगों ना, मेरे एज का या फिर अभी जो यंग जनरेशन बड़ा हो रहा है, अपना स्किल में मेहनत करो, अपना टैलेंट में फोकस करो। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई सब कुछ नहीं है। इतना पढ़ाई वाला लोग भी अभी बहुत कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं होके बैठ रहे, तो ना सबके लिए वो मौका, सबको मौका नहीं मिलेगा बहुत टैलेंटेड होने से भी। तो हमेशा हमको लगता है कि अपने लिए ऑप्शन होना जरूरी है, और थोड़ा अच्छा इंसान हमको लगता है। काइंड और हम्बल होना हमको जरूरी लगता है आजकल के जमाने में, क्योंकि आजकल इतना झगड़ा होते रहते हैं देखने से ना, थोड़ा सा बोलने से भी

0: देने में झगड़ा होते रहते हैं, मतलब कहीं भी सुनने से ना,
1: हाँ
0: तो एक दूसरे में थोड़ा काइंड, थोड़ा हम्बलनेस ना, एक अगर पार्टी थोड़ा गुस्सा है तो आप थोड़ा अच्छा से शांत से जवाब दे दो एक बार के लिए ना, क्या पता उसका क्या दिन चल रहा होगा ना।
1: हाँ
0: हम ये सब में बहुत बिलीव करते हैं, हम इतना झगड़ा हो रहा, हम इतना इन्वॉल्व नहीं होते, तो हमको दूसरा को देखने से लेकिन लगता है कि वो अगर गुस्सा मूड में बोला है तो आप एक बार के लिए हम्बल होके अच्छा से आंसर कर दो। तो हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, थोड़ा हम्बल एंड काइंड होना जरूरी है।
1: दोस्तों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम माई स्टेट माई प्राइड यहीं पर समाप्त होता है। कितनी अच्छी बात कही है हिलांग जी ने कि इंसान को थोड़ा हम्बल, थोड़ा शांति होना बहुत जरूरी है। आजकल हम हर छोटी बड़ी बातों पे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जाति, धर्म, जगह, बहुत सारी चीजों पर हम झगड़ते हैं, लेकिन हमारा चेहरा, हमारा गौरव, जैसे हिलांग याजी जब कहती है कि हमें थोड़ा शांति और विनम्र होना जरूरी है, तो हम ये विश्वास करते हैं कि कई लोग उनकी इस बात से प्रेरित होंगे और अपने स्वभाव के साथ प्रदेश में एक नया और अच्छा बदलाव जरूर लाएंगे। तभी तो ये अरुणाचल का गौरव है। यस, माय स्टेट माय प्राइड, हिलांग याजी। अगले हफ्ते एक और नए अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम माय स्टेट माय प्राइड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन दोस्तों, अभी कहीं जाइए मत, क्योंकि अब एक बार फिर शुरू होगा हमारा संगीत का सिलसिला अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे।

हाँ जी सुधा दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप और उसके तुरंत बाद अरुणाचल न्यूज रीड। तो बने रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननाश।

0: And with that, we came to the end of today's episode of Western Melodies here on Akashvani Itanagar. I'm your host, Coco. Thank you for spending this beautiful moment with us. I hope today's song brought back memories, emotions, and good energy. Until next time, stay safe, stay happy, and keep listening to good music. Bye-bye.
1: तो सो दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज आप आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहां होती है दिल से दिल की बात और अब शुरू होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। आइए सुनाते हैं आपको इस कार्यक्रम में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। ये गीत है अजनबी कौन हो तुम, ओनली ऑन अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

कल नई कोंपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल

सो तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बोले भूले बिसरे गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 9:29, यानी अब समाप्त होगा हमारा तीसरा प्रसारण सवा। आई होप कि इस सवा में बजे सारे कार्यक्रम आप सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किया जितना मैंने आप सबके साथ। हम फिर मिलेंगे कल हमारी पहली प्रसारण सभा में आप सबके साथ इसी स्टेशन से। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, क्योंकि यहाँ होती है दिल से दिल की बात। जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता पी बी ड्योरी। और अब मुझे यानी आपका दोस्त आपका अपना होस्ट आरजे ननास को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, नमस्कार।

0: संस्कृति केवल हमारी स्मृतियों में सुरक्षित अतीत का नाम नहीं, वो उन विचारों, मूल्यों, कलाओं और अनुभवों की एक निरंतर यात्रा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हुए हमारे वर्तमान को अर्थ देती है और भविष्य की दिशा तय करती है। भारत की सांस्कृतिक चेतना और समृद्ध ज्ञान परंपरा में स्वतंत्रता का विचार भी कुछ ऐसा ही है। केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, ज्ञान की स्वतंत्रता, अपनी पहचान और अपनी परंपराओं को समझने की स्वतंत्रता। इसी विषय पर आज की पत्रिका के संपादकीय में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम वैचारिक धरोहर है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह किसी एक रूढ़ी, डॉगमा या संकीर्ण विचारधारा से बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसके मूल में स्वतंत्रता का एक ऐसा गहरा, व्यापक और बहुआयामी मूल्य निहित है जो मनुष्य को न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त करता है, बल्कि उसे आंतरिक और आध्यात्मिक धरातल पर भी परम स्वतंत्र बनाता है। आधुनिक युग में जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान राजनीतिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की आजादी, नागरिक स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत स्वायत्तता की ओर ही अधिक जाता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भारतीय चिंतन में स्वतंत्रता केवल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव अस्तित्व के चरम लक्ष्य और उसके लोक परलोक के कल्याण से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता शब्द दो पदों से मिलकर बना है, स्व और तंत्र, जिसका अर्थ है अपने तंत्र या अपने नियम के अधीन होना। यहाँ स्व का अर्थ व्यक्ति की वह अंतर्निहित चेतना है जो समूचे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, जिसका लक्ष्य है वासनाओं, विकारों, अज्ञान और इंद्रियों की अधीनता से मुक्ति। इस स्वतंत्रता की सिद्धि तब होती है जब मनुष्य अपने विवेक और धर्म के अनुशासन में रहकर आचरण करता है। इसीलिए भारतीय चिंतन धारा में स्वतंत्रता का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है, जिसे सभी आस्तिक दर्शनों में जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वीकारा गया है। स्वतंत्रता का यह बोध भारतीय ज्ञान परंपरा की पहचान है। भारतीय ज्ञान परंपरा में जहाँ वेदों को परम प्रमाण मानने वाली आस्तिक परंपराएं जैसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य

योग, मीमांसा और वेदांत दर्शन है, तो वही वेदों की सत्ता को खारिज करने वाली नास्तिक परंपराएं जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन भी समानांतर रूप से है। विचार और अभिव्यक्ति की इसी स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें उपनिषदों के संवादों में भी मिलता है, जहां गुरु और शिष्य के बीच अत्यंत लोकतांत्रिक और स्वतंत्र माहौल में संवाद मिलता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता में भी जब अर्जुन विषाद से घिर जाते हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें जीवन, प्रकृति, कर्म और आत्मा का गहनतम ज्ञान देते हैं और पूरे 18 अध्यायों के बृहद उपदेश के बाद अंत में अर्जुन से कहते हैं, मैंने तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान दिया है, अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, इसका विश्लेषण करो और फिर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। निर्णय लेने की यह स्वायत्तता और स्वतंत्रता ही भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक गुण है, जो भारतीय सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में भी धर्म के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी विशेष कर्मकांड या संप्रदाय से नहीं है, बल्कि उन सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों से है जो समाज के विनियमन के लिए आवश्यक हैं। इसी धर्म का प्रभाव है कि भारतवर्ष में कभी भी राजा की सत्ता को निरंकुश और असीमित नहीं माना गया है। ऋग्वेद का संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् का उद्घोष सामाजिक स्वतंत्रता और समता का एक ऐसा ही प्रमाण है जो सभी को अपने साथ चलने, साथ बोलने और सभी के मनों को समान रूप से समझने के भाव पर केंद्रित है। यह इस बात का भी प्रमाण है कि सामूहिक चेतना के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और परस्पर संवाद को कितना अनिवार्य माना गया है। इसी प्रकार भारत ही नहीं, विश्व में समादृत रामचरितमानस के उत्तर कांड से एक उदाहरण द्रष्टव्य है, जहां राज्याभिषेक के बाद राम प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भाखो भाई, तो मुहि बर जहु भय बिसराई, जिसका अर्थ है कि वही मेरा सच्चा सेवक है और वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है जो मेरी आज्ञा का पालन करता है। हे भाई, यदि मैं कभी कोई अनुचित या अनीति बात कह दूं, तो तुम सारा भय भुलाकर मुझे टोक देना। अपने शुद्ध विचार को निर्भीक भाव से रखना ही भारतीय चिंतन धारा का स्वतंत्रता चिंतन या स्वातंत्र्य बोध है, क्योंकि भारतीय मनीषा एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति की विश्वासी है। आज जब दुनिया में अपने विचार को ही एकमात्र सत्य मानकर दूसरों पर थोपने की हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब भारतीय ज्ञान परंपरा का यह मूल्य हमें सह अस्तित्व, सहिष्णुता और लोकतांत्रिक विमर्श की वास्तविक राह दिखाता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस स्वातंत्र्य बोध की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज का व्यक्ति राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, उसे मतदान का अधिकार है, बाजारवादी संस्कृति ने उसे अपनी पसंद की वस्तुएं खरीदने की असीमित आजादी भी दी है, वह समाज, प्रकृति और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज पर्यावरण संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक बिखराव जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ स्वार्थ सिद्धि प्रमुख है, स्व का बोध या स्वातंत्र्य बोध का विचार यहाँ दूर दूर तक नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा इस एकांगी स्वतंत्रता के स्थान पर एक पूरक और समग्र स्वतंत्रता मॉडल प्रस्तुत करती है। यहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और प्रकृति की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक पर्यावरण चेतना और सतत विकास का मूल मंत्र भी यही कहता है कि हमारी उपभोग की स्वतंत्रता तब तक ही न्याय संगत है जब तक वह दूसरों के अस्तित्व और प्रकृति के संतुलन को खतरे में न डाले।

0: इस प्रकार हम पाते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता का मूल्य अत्यंत व्यापक, गहन और शाश्वत है। यह काल और भूगोल की सीमाओं से परे जाकर संपूर्ण मानवता के कल्याण की बात करता है। विश्व को यह समझने की आवश्यकता है कि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों को यदि अधिक मानवीय, संवेदनशील, न्यायपूर्ण और टिकाऊ बनाना है तो उन्हें स्वतंत्रता की केवल बाहरी व कानूनी अवधारणाओं तक ही सीमित रहने के बजाय भारतीय चिंतन धारा के चेतना और कर्तव्य आधारित स्वतंत्रता मूल्य को आत्मसात करना होगा।
1: भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित स्वतंत्रता के मूल्य, इसी विषय पर आज के संपादकीय में अभी आपने सुना दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर विभा नाइक को। भारतीय ज्ञान परंपरा की यही विशेषता है कि वो हमें केवल उत्तर नहीं देती, वो प्रश्न करने का साहस भी देती है, और शायद यही किसी भी जीवंत संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। साहस अज्ञानता के विरुद्ध प्रश्न करने का हो या किसी अन्याय के विरुद्ध। हमारे देश में ऐसी प्रबुद्ध और साहसी आवाजों की कमी कभी नहीं रही।
2: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम।
1: आज जब हम भारत की आजादी की कहानी याद करते हैं तो हमारे सामने कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े आंदोलन और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं उभरती हैं। लेकिन आजादी की ये कहानी सिर्फ उन्हीं नामों की नहीं थी, ये उन अनगिनत स्त्री पुरुषों की भी कहानी थी जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ही एक आवाज को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज।
3: चौदह जनवरी 1902, दक्षिण सिक्किम के संगमू गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। लेप्चा समुदाय के एक परिवार में जन्मी हेलेन उनके माता पिता की 7 संतानों में तीसरी थी। बाद में उनका परिवार करसियांग आ गया, वो पहाड़ी इलाका जहां चाय के बागान और शिक्षा के नए अवसर उनके जीवन को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन हेलेन की राह आसान नहीं थी। कम उम्र में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, मगर पढ़ाई छूटने का अर्थ ये नहीं था कि सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला भी रुक गया। सन 1917, पहाड़ियों में चरखे और खादी का आंदोलन चल रहा था। कलकत्ता से आए एक वक्ता के भाषण ने युवा हेलेन के मन को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तय कर लिया उनका जीवन अब देश की सेवा के लिए होगा। अगले ही वर्ष 1918 में वो कलकत्ता पहुंची, चरखा प्रशिक्षण केंद्र में सूत काटना सीखा। उनकी प्रतिभा और लगन ने उन्हें मुजफ्फरपुर बिहार में आयोजित खादी और चरखा प्रदर्शनी में कलकत्ता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी दिया। फिर आया वर्ष 1920, बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में था, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। ऐसे समय में हेलेन लेप्चा राहत कार्यों में जुट गई निस्वार्थ भाव से लगातार, और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से। हेलेन की सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें साबरमती आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने उनके व्यक्तित्व और देशभक्ति को करीब से देखा। यही गांधी जी ने उन्हें नया नाम दिया, सावित्री देवी। लेकिन जिस आवाज में इतनी दृढ़ता हो वो सत्ता को भला कैसे सुहाती? ब्रिटिश सरकार की निगाहें अब उन पर थीं। उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। गिरफ्तारी से बचते हुए वो इलाहाबाद पहुंची और कुछ समय आनंद भवन में रही। वहां उनका संपर्क कांग्रेस के कई नेताओं से हुआ, लेकिन पहाड़ उन्हें पुकार रहे थे। वो वापस करसियांग लौटी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में जुट गई। घर घर जाकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अभियान, ब्रिटिश प्रशासन की पाबंदियां और उनके सामने एक दृढ़ निश्चय,

0: पीछे नहीं हटी। 29 जनवरी 1922, हेलेन लेपचा गिरफ्तार कर ली गई। दार्जिलिंग सदर जेल में 3 महीने, फिर करसियांग में नजरबंदी। समय आगे बढ़ा। सन 1939 और 40, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करसियांग में नजरबंद थे। हेलेन लगातार उनके संपर्क में रही। कहा जाता है कि वो संदेश पत्रों के माध्यम से पहुंचाती थी।
1: मैं दिलीराम दुलाल, एक पत्रकार और इतिहास के विद्यार्थी।
2: कोलकाता में मोहम्मद अली पार्क में आयोजित सभा में हेलेन लेपचा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गई थी। उन्होंने झारिया कोयला क्षेत्र के 10,000 से अधिक मजदूरों का नेतृत्व करते हुए आदिवासी श्रमिकों को शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन भी किया था। उनको इसी आंदोलन में शामिल होने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था। और बाद में जब उन्होंने दार्जिलिंग में अपने साथियों के साथ सदर जेल में 3 महीने तक, बाद में 3 वर्षों तक फाशियांग में जब उनको नजरबंद रखा गया था, उस समय में भी उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया था। जैसे कि 1939-40 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस खारसंग में नजरबंद थे, तब उन्हें उनके साहसिक पलायन में महत्वपूर्ण सहायता की थी। बताया जाता है कि पठान की भेष तैयार करने में हेलेन लेपचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। उनके योगदान के कारण सिक्किम सरकार ने हाल ही में सरकारी मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने के लिए हेलेन लेपचा मेडिकल कॉलेज निर्णय लिया है।
3: मैं सोमनाथ पांडे, सिक्किम से। तो मैं एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हूँ। हेलेन लेपचा के खोज में हम लोग ने सक्रियता से काम किया। उनका सभी इष्टजन थे, उनका जो मित्रों था, उनका परिवारजन था, उनसे मिलके उनका जो पेपर वगैरह ताम्र पत्र सब हम लोग ने निकाल के अभी पूरा ऑडियो विजुअल्स पूरा इतिहास हम लोग ने समेट लिया है। सिक्किम में 1973 से पहले उस समय में भी सिक्किम के लोग भारत के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से भाग लिया करते थे, इस प्रश्न में हम लोग खोज करते हैं। इसी दौरान में सावित्री देवी जो हेलेन लेपचा है उनका संदर्भ में हम लोग ने काम किया है। वो विशेष करके मजदूरों को इकट्ठा करना, मजदूरों को स्वावलंबी कैसे बनाना, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सबसे पहले तो बीमारियों को देखा, दवाई औषधियां किया, उसके बाद में उन्होंने स्वावलंबी बनाने का काम किया। तब ये तब वो बड़ा स्वाभिमानी, वो एक तो निडर माता के रूप में परिचित है। उनका 3 नाम है। एक तो सबसे पहले नाम उनका हेलेन लेपचा था। तो बाद में जाके ये नाम थोड़ा सा अंग्रेज का जैसा लगा, अंग्रेजी स्कूल से ये शिक्षित हुई थी, तो अंग्रेज का जैसा नाम होने के बाद में महात्मा गांधी ने उनको सावित्री देवी नाम दे दिया। तब उनका गांव में जो खरसांग और सिक्किम में उनका नाम साइली दीदी करके परिचित था। साइली मतलब होता है नेपाली भाषा में थर्ड, तीसरा होता है। तब साइली करके थर्ड करके साइली दीदी करके ऐसा नाम उस प्रसिद्ध हुई। तो उनको ताम्र पत्र भी मिला उस समय में स्वाधीनता संग्राम के, लेकिन वो थोड़ा सा समाज में वो ओझल हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा है कि जो आगे निकल गए उनका इतिहासकारों ने समेट दिया, लेकिन जो ट्राइबल उन्होंने विशेष करके दुर्गम क्षेत्र में ही काम किया, तो उनका नाम थोड़ा इतिहास में थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो अभी बहुत अच्छा से उनका नाम आगे आ रहा है। सिक्किम में तो उनका नाम से मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो और उनका कई रास्ता का नाम हेलेन लेपचा का नाम से अभी बन रहा है।
0: वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने समाज सेवा का काम जारी रखा। 15 अगस्त 1972 को भारत सरकार ने उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें ताम्र पत्र प्रदान किया। 18 अगस्त 1980 को हेलेन लेपचा ने अंतिम सांस ली, लेकिन उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है।
4: हेलेन लेपचा, हिमालय की बेटी, आजादी की आवाज। अभी आपने ये लघु रूपक सुना। आलेख अंकुश रोनियार का था, वाचन स्वर प्रांजल।

0: स्वतंत्रता संग्राम केवल रणभूमि में लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, ये घरों में लड़ी गई, विद्यालयों में लड़ी गई, लेखन और पत्रकारिता में लड़ी गई, गीतों और कविताओं में लड़ी गई। और इस संघर्ष में भारतीय महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई। किसी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने भूमिगत रहकर क्रांतिकारियों की सहायता की, तो किसी ने अपने लेखन और विचारों से राष्ट्र की चेतना को जगाया। ऐसी ही कुछ साहसी महिलाओं की स्मृति को समर्पित है हमारी अगली प्रस्तुति, राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं, स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी महिला सेनानियां। आलेख और स्वर है प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का।
1: बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे।

0: जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्मरण होती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिस अदम्य साहस का परिचय दिया वह भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन चुका है। अंग्रेजी सत्ता के सामने उनका यह संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी राष्ट्रीय स्वाभिमान का उद्घोष प्रतीत होता है। इसी संघर्ष की एक और तेजस्वी कड़ी बेगम हजरत महल। अवध की इस वीरांगना ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया और लखनऊ में विदेशी सत्ता को खुली चुनौती दी। स्वतंत्रता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने वाली एक सशक्त आवाज थी सरोजनी नायडू। अपनी वोजस्वी वाणी और राष्ट्रवादी विचारों के माध्यम से उन्होंने हजारों महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। वे मानती थी स्वतंत्र भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिलाओं को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो।
1: आई बिलीव दैट आई मस्ट डिस्प्रूव द एज ओल्ड प्रोवर्ब दैट द वुमन हैज द लास्ट वर्ड एंड द लॉन्गेस्ट वर्ड। आई हैव द लास्ट वर्ड नो डाउट, नॉट बिकॉज आई एम अ वुमन, बट बिकॉज आई एम एक्टिंग टुडे एज अ होस्टेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: महात्मा गांधी के संघर्ष में एक मौन किंतु अत्यंत सशक्त शक्ति थी, कस्तूरबा गांधी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को जीवन में उतारते हुए अनेक आंदोलनों में भाग लिया और जेल यात्राएं भी की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे त्याग, धैर्य, समर्पण की एक शांत धारा भी बहती है। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब अधिकांश राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए, तब अरुणा आसफ अली ने ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। उनका साहस उस दौर के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। स्वतंत्रता संग्राम की चेतना को जन जन तक पहुंचाने में साहित्य की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान अविस्मरणीय है। वो केवल एक कवित्री ही नहीं बल्कि सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्रा की और राष्ट्रीय आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनकी अमर कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ने भारतीय जनमानस में देशभक्ति और स्वाभिमान की ऐसी लौ प्रज्वलित की जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। इसी आंदोलन के दौरान एक युवा महिला ने अपनी आवाज को स्वतंत्रता का हथियार बना लिया। यह थी उषा मेहता। उन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो की स्थापना कर पूरे देश में स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाया। जब अंग्रेजी सरकार समाचारों और सूचनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी, तब उनके साहसिक प्रयासों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की।
2: दिस इज द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग ऑन 42.34 मीटर। टुडे we shall read to you a stupid reasoning of the CNC.

0: सुचेता कृपलानी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय देते हुए भूमिगत आंदोलनों को सशक्त बनाया। बाद में वे स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और यह सिद्ध किया कि संघर्ष से निकला नेतृत्व राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 73 वर्ष की आयु में भी वे आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। अंग्रेजों की गोलियां लगने के बाद भी उनके हाथों में तिरंगा नहीं छूटा और उनके मुख से वंदे मातरम का उद्घोष निरंतर निकलता रहा। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तब कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व संभाला। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर यह स्थापित किया कि राष्ट्र रक्षा और बलिदान के क्षेत्र में स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं।
1: नेताजी हमसे 5 घंटे बात किया, हमारे देश का और दुनिया का आधा हिस्सा को कैसे नजरअंदाज करें, यानी महिलाओं को। अगर महिलाओं को भी देश का प्रेम है, उन लोगों को आजादी का जरूरत है, इसलिए आप महिलाओं को भी हम लेने के लिए तैयार है, उनका भी एक फौज बनाएंगे।

अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति राष्ट्र जागरण की दीपशिखाएं। आलेख और स्वर था प्रसारण कर्मी और प्राध्यापक बिंदु पांडे का। इन दीपशिखाओं ने अपने समय को तो रोशन किया ही, आज भी उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि परिवर्तन की शुरुआत अक्सर एक अकेले साहस भरे कदम से होती है। संस्कृति का संसार बहुत विस्तृत है। कभी वो करघे पर आकार लेता है, कभी किसी पुस्तक के पन्नों में, और कभी उन समुदायों की स्मृतियों में जीवित रहता है जिन्होंने प्रकृति और परंपरा के साथ सह अस्तित्व की अनूठी संस्कृति रची है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय हथकरघा परंपरा और देश के बुनकरों के योगदान को सम्मान देने के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन की उस ऐतिहासिक भावना की स्मृति से भी जुड़ा है जब 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था।

किताबें हमारी स्मृति हैं और पुस्तकालय उस स्मृति का सार्वजनिक घर। हर वर्ष 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है। ये दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का संग्रह नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। और डिजिटल युग में भी वो पढ़ने, शोध और विश्वसनीय ज्ञान तक पहुंचने की संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। भारत की आदिवासी परंपराएं अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, संगीत, नृत्य, कला और प्रकृति केंद्रित जीवन दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। हर वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के आदिवासी समुदायों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और उनके योगदान के लिए जागरूकता बढ़ाना है। करघे के धागों में बुनी हमारी हस्तशिल्प परंपरा, पुस्तकालयों में संरक्षित ज्ञान की दुनिया और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ये तीनों मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक बेहद सुंदर और समृद्ध चित्र रचते हैं। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने अपने

क्षेत्र में भारत के सार्वजनिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे, जहांगीर सभावाला, फिरोज शाह मेहता, प्रफुल्ल चंद्र रे, पंडित रविशंकर शुक्ल और अभी हाल ही में दिवंगत हुए पंडित जगन्नाथ बेहरा। इन विभूतियों का स्मरण उन विचारों, कर्मों और सृजनात्मक ऊर्जा को याद करना है जिनसे हमारा सांस्कृतिक वर्तमान निर्मित हुआ। इन महान विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नवक्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
2: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi today, Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
2: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
1: Further elaborating on India's efforts in the semiconductor sector, Prime Minister Modi said production has begun at India's first semiconductor unit. Union Education Minister Prahlad Joshi, Chairperson Board of Governors of IIT Delhi Harish Salve and Director IIT Delhi Professor Rangan Banerjee were also present at the ceremony. On the occasion, the Prime Minister inaugurated a high-performance computing facility, Param Pragya, at IIT Delhi. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has stressed the need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Addressing the Sahakar Navakranti program in Mumbai today, Mr. Shah said digital transaction frauds are on the rise and called for stronger forensic support to ensure banking safety. The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation and the National Forensic Sciences University signed a memorandum of understanding in the presence of Mr. Shah. The Home Minister highlighted the importance of collaboration with the National Forensic Sciences University in tackling cyber and financial crimes. The Home Minister also launched a security operations center, which will provide round-the-clock cyber surveillance and security support to urban cooperative banks. The government today announced a series of strategic memoranda of understanding, MOUs, with key industry leaders and ecosystem enablers, which are cash-free payments, Darwin Dynamics, Vultra India, Cars 24 and the Council for Startup India. The MOUs have been signed by the Ministry of Commerce and Industries Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT. The Ministry of Commerce and Industry informed that the MOU signed with cash-free payments aims to strengthen digital infrastructure support for startups. The MOU signed with Ultra India Private Limited focuses on strengthening the technology infrastructure.

0: available to DPIIT recognized startups. Union Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju has welcomed the demand of Shiromani Akali Dal for immediate implementation of the Women's Reservation Bill in the country. In a social media post, Mr. Rijiju said everyone must come together to empower women with a fair and equitable delimitation that ensures equal representation. Iranian President Masoud Pezeshkian has reaffirmed Tehran's commitment to diplomacy to safeguard the country's national interests while asserting that Iran will not be forced to surrender. In an interview published on his official website, Mr. Pezeshkian defended his government's decision to negotiate with the United States and sign a memorandum of understanding aimed at ending the war. He said Iran would honor its commitments as long as Washington fulfills its obligations under the agreement. He added that Tehran would have no obligation to continue the process if the United States fails to meet its commitments. Earlier, U.S. President Donald Trump had expressed confidence that the conflict with Iran could end soon. Indian shuttler Ashmita Chaliha will take on China's Che Han in the women's singles final of the Korea Masters badminton tournament in Assam tomorrow morning. Ashmita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अपर्णा सिंह ग्यारहवीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भोपाल घोषणा पत्र अपनाया गया सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान अमेरिका ने विदेशी कामगारों के लिए नई नौकरी खोजने की 60 दिन की मोहलत अवधि के समाप्ति प्रस्ताव की समीक्षा की ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सरकार कूटनीति के प्रति प्रतिबद्ध है और दबाव में नहीं झुकेगी ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के तोमचो मितेई ने स्वर्ण सहित 3 पदक जीते गुरु नायडू सेनापति को 2 रजत और 1 कांस्य पदक और बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में अश्मिता चालिहा का मुकाबला चीन की क्यू हान से होगा समाचार विस्तार से भारत की अध्यक्षता में आज मध्य प्रदेश के भोपाल में 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई बैठक में भोपाल घोषणा पत्र को अपनाया गया इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए एक रिपोर्ट
2: प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की उन्होंने कलाकारों के लिए और ज्यादा अवसर तैयार करने पर भी ध्यान दिया बैठक में कलाकारों को बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर चर्चा हुई सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और उसे बहाल करना भी एक अहम मुद्दा था भारत ने ब्रिक्स देशों के कलाकारों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और पेशेवर नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट योजना स्वैच्छिक कलाकार रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा की बैठक में कलाकारों के अधिकारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कॉपीराइट वाले कामों के सही इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भोपाल ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक व्यवहारिक और भविष्य की सोच वाला ढांचा तैयार किया है उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए पारंपरिक ज्ञान भाषाओं लोक संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया श्री शेखावत ने कहा कि मध्य प्रदेश की संस्कृति और विरासत पर विशेष ध्यान दिया गया उन्होंने कहा कि इन सांस्कृतिक परंपराओं को बचाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार
1: अमेरिका गैर अप्रवासी वीजा पर काम करने वाले कुछ विदेशी कामगारों को नौकरी छूटने के बाद नया रोजगार खोलने के लिए दी जाने वाली 60 दिनों की अवधि को समाप्त करने वाले प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो प्रभावित कामगारों को नौकरी समाप्त होने के तुरंत बाद देश छोड़ना पड़ सकता है गृह सुरक्षा विभाग के इस प्रस्ताव की संघीय प्रबंधन और बजट कार्यालय में समीक्षा जारी है इसके बारे में अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है 60 दिन की छूट अवधि वर्ष 2017 में विदेशी कामगारों और उनके आश्रितों को नौकरी छूटने के बाद नया

0: कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति पिजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात ने आज सरकारी कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़े एक जहाज पर होर्मुज जल डमरू मध्य के पास हुए ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। मंत्रालय ने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर आरोप लगाया है कि वो कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाकर और रणनीतिक जलमार्ग का इस्तेमाल आर्थिक दबाव बनाने के लिए करके समुद्री डकैती जैसी हरकतें कर रहा है। उसने ईरान से तुरंत ऐसे हमले बंद कर होर्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह बिना किसी शर्त के फिर से खोलने को कहा। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने पहले भी धमकी दी थी कि वे जल डमरू मध्य से गुजरने वाले उन जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो तेहरान के दुश्मनों से जुड़े हों या ईरान के निर्देशों का पालन न करते हों। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आतंकवादियों ने युगांडा की सीमा से लगे पूर्वी कांगो के एक गांव पर हमला किया और 13 लोगों की हत्या कर दी। एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस ADF ने यह हमला मांबासा के पास बनाना इकोले गांव में किया। बुल्गारिया ने कहा है कि पड़ोसी रोमानिया से उसके हवाई क्षेत्र में एक ड्रोन अवैध रूप से आया और ट्रांस बाल्कन गैस पाइपलाइन के पास फट गया। प्रधानमंत्री रुमेंद्र रादेव ने बताया कि बुल्गारिया सीमा के अंदर लगभग 100 मीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन से लगभग 1 किलोमीटर दूर ड्रोन फटने की घटना हुई और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। यमन में मारिब और हदर मौत प्रांतों में हाल में हुए हुती विद्रोहियों के हमलों के जवाब में सशस्त्र बलों ने सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं। यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल नुजैली ने बताया कि हुती विद्रोहियों के बार बार होने वाले हमलों के बाद सरकारी बलों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। टॉमचो मितेई ने 266 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। गुरनायदू सेनापति ने 2 पदक जीते। उन्होंने कुल 265 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। भारत की अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। आज सेमीफाइनल में अश्मिता ने साथी खिलाड़ी रक्षिता रामराज को शिकस्त दी। आइए सुनते हैं करिश्मा राय की रिपोर्ट।
2: भारत की 2 युवा खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में कड़ी टक्कर देखने को मिली। सेमीफाइनल मुकाबले का पहला ही गेम रोमांच से भरपूर रहा। कड़े संघर्ष के बाद अश्मिता पहले गेम को 21-13 से अपने नाम करने में सफल रही। दूसरे गेम में रक्षिता ने जोरदार वापसी की और गेम को 21-16 से जीतते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे गेम में अश्मिता ने रक्षिता को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अश्मिता चालिहा की भिड़ंत कल चीन की हान किया नक्सी से होगा।
0: कल समाप्त होने वाले BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 सीरीज इवेंट का कुल प्राइज फंड 2.5 लाख अमरीकी डॉलर है। और अंत में मुख्य